नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हाँ। अज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने की एक तारीख। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने की अज 22 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। साढ़े अज के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करदे हां।

0: के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छान दिए जब लग घट में प्राण। धर्म दी शुरुआत हमेशा दया तो हुंदी है, ते हंकार सारे पापां दी जड़ हुंदा है। इसलिए जदों तक साडे शरीर दे विच प्राण ने, उदों तक मनुख नूं कदी वी दया दा भाव नहीं छड़ना चाहीदा। ते जेकर मनुख ऐदा करदा है तो परमात्मा हर वेले उस दे सिर ते अपना आशीर्वाद हाथ बना के रखदा है।

सुबह की ताजगी में एक नया एहसास हो, सुबह की ताजगी में एक नया एहसास हो, खुशियों से भरा आपका पूरा दिन खास हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हर सुबह आप एक नई रोशनी के साथ उठते और जीते रहो। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाली रिफ्रेशिंग फ्राइडे मॉर्निंग। भाई रिफ्रेशिंग तो है, बाहर जाके मौसम देखे, बूंदाबांदी हो भी चुकी है, काफी ज्यादा बदल सी सवेरे सवेरे, लेकिन मैं सोचा कि गर्मी दे विच आना है तो कुछ ना कुछ तो खास लेके जाना पड़ेगा तुहाडे लई। फिर मैं सोचा बदल है तो थोड़ी जी छिट्टा आप मीदिया ही पा दें, मौसम खुशनुमा हो जाएगा जिदा का अज का दिन है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है। हाँ जी, हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग है जी। और फिलहाल 7:04 और पूरे 50 सेकेंड हो चुके ने और आवाज सुन रहे हो तुसी केदी केदी। हाँ जी हाँ जी, फ्राइडे दी सुबह, फ्राइडे दी सवेर या सुबह रेडियो दी आवाज ते पूजा टोहानी दा अंदाज लाइव सेट है जी। आई है ना फीलिंग, बस यही फीलिंग नू आपा कैरी फॉरवर्ड करना है पूरे दिन। 102.7 ट्यून कीता होया जी तुसी और नाल दी नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज ते अमृतसर और नाल दी नाल साडी सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे दोस्त।

वेलकम बैक वंस अगेन। मौसम तो है ही बार लवली लवली जिया, लेकिन उस तो पहला बाहर निकल के देखो, बेड नू छड़ोंगे तुसी बाहर जाके, एक जाती मारूंगे ताई ने, तुहानू पता चलूगा सही दस रही है, इनफॉरमेशन सही है मेरी या फिर नहीं। चलो हुण थोड़ा जिहा लेजीनेस नू बाय बाय कहो ते जरा उठ के बाहर जाओ, देखो प्यारा जिहा मौसम इंजॉय करो, और बड़ी सौंधी सौंधी जी खुशबू आ रही है बाहर मिट्टी दी। बारिश दी जदों बूंदा डिगदियां ने ना मिट्टी ते, किन्नी मिठी मिठी स्मैल हुंदी है, बस ओही आ रही है बाहरों। वैसे जरूरी है कई बारी थोड़ा जिहा रुकना, रुक के आस पास देखना, कुदरत नूं देखना, तो बड़ियां सारियां चीज़ां उहदे विच नज़र आ जांदियां ने। यानी कहिंदे आ ने कि प्रैक्टिस द पॉज, बहुत ज़्यादा भज नठ वाली बिजी लाइफ दे विच जरूरी हुंदा है थोड़ा जिहा पॉज लैना। जदों डाउट दे विच होवो, हेस्टी डिसीजनस बिल्कुल ना लो, कोई जल्दबाजी ना करो, बस पॉज करो, थोड़ा रुको। और जो गुस्सा आवे उदो भी नहीं कुछ करना चाहिए, थोड़ा जहा पॉज करना चाहिए है। बहुत ज्यादा थके हुए हो उदो तो रुकना बनता ही है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गई है उदो भी रुको। एंड वेन यू पॉज, जो असं इतना थोड़ा जहा पॉज लेंदे हैं, थोड़ा जहा थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ना, उदो प्रे करया करो, अरदास करया करो परमात्मा दे अगे, जो भी मुश्किल है उन्हों दस्या करो, ते परमात्मा उस मुश्किल नो या फिर वो जड़ी परेशानी हुंदी है उसनों दूर करन दे लई कोई ना कोई रस्ता जरूर दिंदा है। और कई बारी अगर ना भी आ पावे आप रब, ते रब वर्गा कोई ना कोई इंसान तुहानू जरूर दे दिंदा, जिहड़ा परमात्मा दा दित्ता होया मैसेज सानू पहुंचा दिंदा है। ट्राई करके देखो, मैजिकल रेमेडीज ने और ये 100% आजमाइया हुई एंड प्रैक्टिकल ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

असर तो पाएगा, लेकिन घुलन मिलन का मौका भी मिलेगा। परिवार मिल के बैठेगा, परिवार के बुजुर्गों तो पिंड दियां शहर दियां इतिहास दियां जानकारियां लेनिया होगियां, पानी बचाउण दे तरीके, पर्यावरण, खेती, इन सारे मुद्दों ते अध्ययन शामिल है इस बार होलीडे होमवर्क दे विच। और इस तो इलावा इस बार विभाग ने पहली बार पूरी प्रक्रिया नूं डिजिटल बनाया है, यानी कि क्यू आर कोड जारी किया जाएगा हर क्लास दे लई, हर सबजैक्ट दे लई, और उस स्टूडेंट नूं अपने पेरेंट्स दे नाल मोबाइल ते स्कैन करके डायरेक्ट वो जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां दित्तियां जाणगियां वो डाउनलोड कर सकनगे, और उस तो बाद बस एक्टिविटीज़ करो, इंजॉय करो अपने हॉलीडेज, एंड दैन लिखण दा जिहड़ा काम है, प्रेशर है, वो खत्म। मतलब तुहाडी हालत मेरे वर्गी नहीं होएगी, तुसीं इंजॉय कर सकोगे अपनियां गर्मियां दियां छुट्टियां टेंशन तो बिना। सो फिलहाल टाइम हो गया है मैनू लगदा कि अगले गाने नू इंजॉय करना, सो जाना नहीं है कि तुसीं फिलहाल इंजॉय करो अगला ट्रैक, एंड स्टे ट्यून्ड रहो एफएम रेनबो ते पूजा टोहानी यानी कि मेरे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: वेलकम बैक वंस अगेन। और फिलहाल 8:18 और पूरे 32 सेकेंड हो गए ने, यानी कि टाइम ते गल्लां करन दा है, टाइम ते चल ही रहा है और नाल दी नाल चल रही ने मेरी गल्लां बातां तुहाड़े नाल, यानी कि पूजा तुहानी तुहाड़े नाल बनी हुई है और फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर FM रेनबो ते, जिन्हों ट्यून किया है जो 102.7 103.6 न्यूज ऑन AIR ऐप ते। और एक होर चीज़ बई, देखो मैनू पता है अज फ्राइडे और तुहाड़े बिल्कुल बैग पैक हो गए होणगे, निकलण दी तैयारी तुहाड़ी पूरी होएगी कि आपां अज दुपहर नूं शाम नूं निकल जाइए, जिद्दां ही ऑफिस तों आपां छुट्टी करिए ते आपां नाल ही घूमन किते चल जाइए, है ना है ना है ना। मैनू पता तुसीं मेरे वर्गे हो, बट एक चीज़ है, जदों भी किते जाणा है आपां थोड़ा जिहा अपनी स्पीड वल भी ध्यान देणा, कैमरे वल भी ध्यान दे ही सकदे आं आपां, अगर नहीं देणा सिर्फ एक चीज़ वल ध्यान दे लिओ और है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक समझे तुसी, ट्रैफिक लाइट्स वल ध्यान देना आपां, क्योंकि आपां अपने वल ध्यान देवांगे और नाल दी नाल ट्रैफिक लाइट्स वल ध्यान देवांगे, यानी कि अपनी स्पीड ते ध्यान दिंदे हुए ट्रैफिक लाइट्स दे अकॉर्डिंग अगर चलांगे ते मैनूं लगदा कि सेफ एंड सुरक्षित रहांगे। और साडा ये जिहड़ा रोड बिहेवियर है जरूरी है, क्योंकि ये साडे लई नहीं बाकियां दे लई भी जरूरी है, मतलब सेफ्टी मास्ट है जी। सो इस करके जिन्हें ट्रैफिक रूल्स हैगे ने उन्होंने फॉलो करना चाहिए है। ओवर स्पीडिंग तो बचो, सीट बेल्ट जरूर लगाओ और ड्राइव करते हुए प्लीज़ फोन का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ध्यान उधर चले जाता है ना। ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हो बट मैं लगता कि अवॉइड करना चाहिए है जिन्ना हो सके फोन का इस्तेमाल, कॉल्स रिसीव ना करो और फोन ते स्क्रोलिंग ते ड्राइव करते हुए बिल्कुल मना है जी, अब इग्नो। और अगर लगता है कि बहुत जरूरी गल है किसे ना करनी चाहिए तो गड्डी साइड ते लगाओ और फटाफट गल करके बस अपनी डेस्टिनेशन दे वाल अगे वधो, लेकिन ब्रेक्स वाल जरा थोड़ा जहा ज्यादा ध्यान दो एंड एंजॉय दिस ट्रैक।
2: Either you stay out of it, or you go in all the way. Break on fear. Yeah. Yeah. Yeah. All right.

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स. और फिलहाल जो टाइम है वो है जी बिल्कुल ही म्यूजिक वाला टाइम है जी. 8:40 और ठीक 9 बजे तक साडा सैगमेंट जिस विच तुसी मेरी इंटरप्शन तो बिना इंजॉय करदे हो नॉन स्टॉप पंजाबी बीट सॉन्ग्स. यानी कि सैगमेंट अड्डी टप्पा. सो जल्दी दे नाल शुरू कर दिया. मैनू लगदा कि अज दा अड्डी टप्पा और आ रहा है जी प्रोग्राम दे विच फर्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून एंड Enjoy Adi Tappa.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स। और बस इसीलिए देखो तुहाडी सेवा दे विच आ जाने आ, हाजिर हो जाने आ जी, जदों जदों मौका मिलदा उदों उदों ही फटाफट में उस मौके ते ना ते तुहानू इंतजार करानी आ और ना मैं वेट करदी आ। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, थोड़ी जी राहत वाली कूल मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग। स्वागत है जी तुहाडा बहुत बहुत एफ एम रेनबो ते। ट्यून की तुहाडे जी तुसी 102.7 एफ एम रेनबो नू और नाल दी नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर दे लिसनर्स जुड़े होए ने साडे नाल 6:30 तो 10 बजे तक बने रहणगे साडे नाल। और इसे ही फ्रीकुएंसी दे जरिए सरहद पार तो भी साडे प्यारे प्यारे लिसनर्स साडे नाल ट्यून इन करदे ने एफ एम रेनबो जलंधर नू। और किवें बोल सकते हैं जी, हाँ जी तुहाडी वारी भी आ गई है, आ रही है तुहाडे वल भी। न्यूज़ ऑन ही है यार ऐप ते, लिसनर्स वेट करते होंगे कि मैं उन्हां दा नाम कदों लवां। लो जी तुसी भी सानू देशां विदेशां दे कोने कोनियां दे विच बैठे मैनूं पता कि बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं प्रोग्राम, क्योंकि लाइव है तो लाइव है और आकाशवाणी का एफ एम रेनबो एब्सोल्यूटली लाइव है। और ये जिहड़ियां गल्लां असीं करदे हाँ एफ एम रेनबो ते, मैं तो कर दिया गल्ला दिल तो और तुहाड़े दिल तक जरूर पहुँच दिया ने, इसे करके दिल से दिल तक है जी एफ एम रेनबो दा ए वाला शो जिसका मैनू ते तुहानू रहिंदा है बेसब्री दे नाल इंतजार। जी हाँ, और दिल अपना पंजाबी है शो दा नाम। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी हाजिर हो सकते हो, शामिल हो सकते हो, अटेंडेंस लगा सकते हो। अटेंडेंस रजिस्टर देखो मैं खोल के बैठी हुई है, तुहानू आवाज़ आ गई है ना? हाँ जी, इस ते लगनी है तुहाडी अटेंडेंस। सो जल्दी दे नाल फोन चको सब तो पहला ते अपना। अच्छा चक्या होया ऑलरेडी, ओके। अच्छा भेज दिते ने मैसेज, ओ रुको पहले मैनू दस ते लैण दिओ मैनू दस लैण दिओ। मैनू पता कि तुसी जानदे हो प्रोसेस की है, भी जिन्हां ने हजे तक प्रोसेस सुनिया नहीं है, अज पहली बारी सुन रहे ने या हजे उन्हां नू प्रोसेस बारे नहीं पता, उन्हां नू भी ते दसना बनदा है ना। हाँ जी, हुण उन्हां दी वारी है। देखो फोन चको 9855-10-10-27 ते, यानी कि 9855-101027 ते की करना है, तुसी अपना मैसेज रिकॉर्ड करना है। ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करूँगे, प्यारा जहा मैसेज, साफ सुथरी, पीछे हाँ जी कुदरत की आवाज़, पंछियों के चहचहाण की आवाज़ अगर आँदी है तो फिर आन दो, लेकिन उदा तुहाड़ी आवाज़ क्लीयर हो। मैसेज प्लीज़ बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, सारे की वारी आ जाए। और इस मैसेज नूं तुसीं भेज देना है जल्दी तो पहला 9855-10-10-27 ते, क्योंकि मैं यानी कि तुहाड़ी दोस्त, तुहाड़ी आरजे होस्ट, आरजे पूजा तुहाड़े नाल बनी हुई है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां होनी चाहिए।
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जी, बहुत ही वधिया लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है। सारी दोस्तों नूं गर्मी दे विच एक गुजारिश है कि पशु पक्षियों वास्ते पानी ते दाने दी व्यवस्था रखो, ते सारे ही यानी जीव जंतु जिंदगी दा आनंद लैन, गर्मी तो राहत पौन
1: जी।
0: बाकी पूजा टवानी जी, हुण तुसीं आप ही समझदार हो, काफी दिन हो गए, हुण आण दिओ एक फिर मिठा जा ते वधिया जा ते लाजवाब जा शेर सिटो। तुसीं वी
1: मैं कहण लगी सी
0: बस ज्यादा दूर ना सिटो
1: जी,
0: थैंक यू,
1: नेड़े नेड़े सुटूंगी, इदा कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये गल सही कही है, लेकिन उससे पहले मेरे को मैसेज है जी, इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, मतलब वड्डा हो के इंसान अपना बचपन भुल जाता है, व्याह होंदा तो कहिंदे माता पिता नूं भुल जाता, बच्चे होंदे ने तो भैन भरा नूं भुल जाते, अमीर हो के गरीबी नूं भुल जाता है, तो जदों बुढ़ा होंदा तो फिर अपना भुलिया होया सारा कुछ याद करता है। ये मैसेज किया है सानू सुखदेव सिंह होरां ने, नरेंद्र कौर, सनी और मुन्नी, काका बिट्टू, लाडी मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो। ते जी मैनू लगता कि हुण जल्दी दे नाल जिहड़ा गाणा दा इन्नी वेट कर रहा है, मेरी इन्नी वेट कर रहा है कि उन्हें मेरे नाल गुस्से हो जाना है, तो जे मैं उन्हें प्ले ना किया, गाणा मेरा फेवरेट वाला है, तुहाडे लई प्ले करन जा रही हाँ, बस चुप करके गाणा सुनो, तो मैसेज जे नहीं भेजे तो फिर जल्दी ना भेजो, नंबर दस देनी 9855 10 10 27 9855 10 0 1 0 2 7। पूजा टोहानी के नाल दिल अपना पंजाबी।

गलती सही है, खुश रखिया भी बहुत है और सोच तो भी परे सी, और मैं जिन्हों क्या है उन्हों पता भी है। माइक दी गल कर रही हूँ।

सो कोई सेलिब्रेशन है ऐसी नच लेने आ, और पेपर च पास हो गए तभी ऐसी नच लेने आ, फेल हो गए तभी ऐसी नच लेने आ, है ना जी, पैचअप हो गया तभी ऐसी नच लेने आ, ब्रेकअप हो जाए तभी ऐसी नच लेने आ, पंजाबी आ जी ऐसी ऐसी कितने भी नच लेने आ, केड़ी वड्डी हुंदे नच सकते हैं, है ना जी। सो जेकर तुहाडे दिल च और तुहाडी बॉडी च भी थोड़े जे स्टेप आ रहे ना, तो चलो फिर बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग, क्योंकि इंजॉय करो तुसी प्रोग्राम गीत बहार, और इस वाले सॉन्ग नु भी आपा, है ना जी, इंजॉय करना है सिर्फ तुहाडे लई, खास कर मैं लेके आ रही हां जी कुछ लोगों के लिए, और हो सकता है तुहाडा भी one of the favorite track, as we enjoy karte hain, stay tuned.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

करके सो जाइए, थोड़ी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो सकती है या जो भी काम असी कर रहे हैं उसकी तैयारी करके, है ना जी। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, सिर्फ 10-15 मिनट ही लगने, तो 10-15 मिनट ना असी सवेरे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो फिलहाल होर कुछ की सेव कर रहे हो तुसीं देखो अपनी लाइफ च, और मैं कुछ नहीं सेव कर रही, लैके आ रही हूँ थोड़े लिए प्रोग्राम गीत बहार जगला गीत। स्टे ट्यून्ड।

0: कहा जो गया है चिराग हर घर के लिए, कहा मयस्कर नहीं चिराग भी शहर के लिए, यहाँ तो दरख्त के साए मेरी धूप लगती है, चलो चले यहाँ से कहीं उम्र भर के लिए।
1: नहीं जा रहे।
0: नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार जी।
0: गांसू परोड़ा सुल्तानपुर लोधी का मुखातब है।
1: ठीक है राम स्वरूप जी, गीत केड़ा सुनना तुसी?
0: मैं जी विदास मांडा आरी कुरी किस्मत कुड़ी
1: ठीक है जी। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। और देखो इन्हें पसंद है, मैं गीत जरूर चलावांगी और कोशिश अगैन मेरी यही रहेगी कि कुछ दोस्त जेड़े कि जिन्हें नंबर हूं तक नहीं लगे, ट्राई कर रहे हैं कि हाय हाय एक बार तो नंबर लग जाए, एक बार तो गल हो जाए स्टूडियो के आप भी पहुँच जाइए। सो पंजाबी तड़का और तुम मेरे नाल जुड़ सकते हो। और सुपनिया की अभी आप गलबात करेंगे। देखो जो आप छोटे होंगे सी है ना, या फिर हूँ वे भी हो गए हैं, कुछ चीज़ा अपनी जिंदगी दे विच अजिहियां हैं या फिर आप कह लिए कुछ ड्रीम्स, कुछ सुपने या कोई विशलिस्ट साड़ी अजिही बनी हुई है जो अजे तक पूरी नहीं हुई है ना। तो आज मैं कोशिश करांगी कि तुहाडे नाल उहदे बारे गलबात करा कि तुहाडा भी कोई सुपना है या फिर तुहाडा भी कोई ड्रीम या कोई तुहाडी विश इदा दी जो तुसी कह रहे हो कि एक बार तो लाइफ च मैं जरूर ये चीज़ करनी है ना, तो वो चीज़ की है गलबात करांगे। फिलहाल इन्हां दी पसंद दा गीत सुनदे हां जी। स्टे ट्यून्ड।

0: सो 11:12:40 पंजाबी तड़का चल रहा है जी प्रोग्राम और एक दोस्त साडे नाल जुड़े ने। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।

0: हीरा लाल गोपाल नगर जलंधर फुलाली मंडी तो बोल रहे हैं।
1: तो हीरा मिल गया पन्ना को कि नहीं मिलिया?
0: पन्ना मैडम तुसी लभदे हो जी कोई?
1: ठीक है ठीक है ठीक है। सो हीरा लाल जी दसो तुसी की कहोगे अज? तुहाडा कोई है सुपना रह गया हुण तक अधूरा पूरा नहीं होया?
0: मैडम जी सतगुरु ने सानू सब कुछ दिता जी।
1: अच्छा जी।
0: जो असी चाहिया सी सानू उस तों ज्यादा मिलिया। हुण इक सुपना हैगा बच्चे मेरे बेटे दी नौकरी लग जाएगी बस।
1: अच्छा चलो बहुत वधिया।
0: एहो ही सुपना रह गया जी बस।
1: चलो जी ठीक है ठीक है। ते मैं तो ये आज दुआ करांगी जी जेड़े सुपने रह गए ना साडे दोस्तां ते ओ पूरे हो जान जल्दी जल्दी।
0: बिलकुल मैडम असीं पेरेंट्स इन्ने मतलब मेहनत करके बच्चियां नूं पढ़ांदे रखांदे ने इन्नी मेहनत करदे ने। ते बच्चे भी बहुत ज्यादा मेहनत करदे दिन रात पढ़दे मैडम ते उहनां नूं नौकरी ना मिले ते बहुत
1: बहुत सारे दोस्त सबर कर रहे इस टाइम कि तुसी जाओगे तो उनकी बारी आनी है।
0: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ।
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ?
0: ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਡਮ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਕੰਟ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

102.7 FM Rainbow और live है तो live है जी, और इसी live देवेच्छ खुशियाँ दा खजाना वरना live radio station 102.7 FM Rainbow और tuning किधा हुई है तो उसी रिचा तोड़ नाल जुड़ी हुई है आज और इस सफर नू आप आगे थोड़ा लेके जा रहे हैं और देखो ये जो ट्रेन आप चला रहे हैं म्यूजिकली एक्सप्रेस है ना दे इधर बीच में अगला स्टॉपेज आ गया और ये स्टॉपेज मैंने पता बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों नू क्योंकि इधर बीच बहुत सारिया गल्ला बातें थोड़े नाल हुंदियां ने और नाल ही नाल जिहड़े छोटे छोटे जिहड़े नुस्खे है ना जी DIY कुछ तरीके कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स थोड़े लिए मैं हमेशा लैके आनी हाँ कोशिश रहती है कि दोस्तों नवी नवी जानकारी जिहड़ी आप देईए और थोड़े कोल भी हो सकता है कोई कमाल की रैसिपी हो जिहदे विच तुसीं उस्ताद हो और वो जिहड़ी रैसिपी है तुसीं साडे नाल शेयर करना चाह रहे हो है ना जी या फिर कोई नुस्खा जो तुसी कह रहे हो कि असी तो अप्लाई कर लिया हुण FM रेनबो दे नाल असी शेयर करिए 98 55 10 10 27 बिल्कुल जी 9855101027 इस नंबर ते मेरे नाल यानी कि रेनबो दे व्हाट्सएप नंबर ते तुसी अपनी वो खास रेसिपी या कुछ भी क्योंकि देखो एक जड़ा होम है ना स्वीट स्वीट बन रहा है इस प्रोग्राम दे विच होम स्वीट होम प्रोग्राम इंजॉय करोगे हुण 1 बजे तक सो फिलहाल इंजॉय करते हैं प्रोग्राम का पहला गीत श्रेया की आवाज़ दे विच उस तो बाद लेके आ रही हूँ थोड़े लिए पिटारा जानकारी का पिटारा स्टे ट्यून्ड

आ रहा है, बस एवी आ रहा है बस, लेकिन रीजन नहीं पता कि इस गुस्से के पीछे का रीजन की है। तो एक्चुअली इस गुस्से के पीछे का रीजन है जी हीट। और जी ये हीट वेव का असर असी देखिया ना गर्मी का, इनू मैं अक्सर कह एक्चुअली वो देखिया, तो ये पिछे वो रीजन ही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हूँ देखो अचानक साडा मूड स्विंग हो रहा है ना, निकी निकी गल ते सानू गुस्सा आई जा रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड असी हैं, थकान फील हो रही है और फोकस नहीं कर पा रहे हैं कितने, है ना जी। तो एक रिसर्च हुई है और वो यही कहा जा रहा है कि जी गर्मी है ना, है ना, ये गर्मी ही जिम्मेवार है कि असी गर्मियों के ना जी मैंटल हैल्थ है ना साड़ी वह बिगड़ जाती है, थोड़ी ट्रैक तो हट जाती है। और इनू आप ट्रैक पर किवें ले आइए, थोड़ा जा किवें बच के रही है, मैं थोड़े नाल गल करांगे प्रोग्राम होम स्वीट होम के। फिलहाल अगले ट्रैक वाला बात चल रहे हैं और उस ट्रैक तो मैं नहीं हट सकती। इंजॉय करते हैं जी नीरज श्रीधर की आवाज़ के एक गीत, तो उस तो बाद थोड़ी जी गर्मी की गलबात करांगे और थोड़ा जा किवें इस मौसम के अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों च होर भी ज़्यादा सता रही है ये गर्मी। सो रहो मेरे नाल, ट्यून इन दिल से दिल तक।

धीरे धीरे की तुहाडा भी स्ट्रेस लेवल है ओ वध रहा है। धीरे धीरे की तुहानू भी बहुत ज्यादा गुस्सा जेड़ा है ओ चढ़ रहा है ना जी, और बेचैनी हो रही है और बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और सानू अपने आप नू नहीं पता लग रहा है कि यार ए सानू गुस्सा क्यों।

और मैं भी कितने नहीं जा रही हूँ, तो दोस्त भी कितने नहीं जा रहे हैं। प्रोग्राम होम स्वीट होम चल रहा है और एक मैसेज सुशील कुमार जी कर रहे हैं सानू यमुनानगर हरियाणा तो, कि हमें आजकल पंछियों और एनिमल्स के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल जी, है ना जी, ये तो है। बट मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये प्रोग्राम जानकारी दे नाल, देखो भरिया हुआ प्रोग्राम है, मैं थोड़े लिए हमेशा कुछ इन्फॉर्मेशन लैके आने। कुछ दोस्त सानू ऑडियो भी भेज रहे हैं अपनी, सो मैं उन्होंने कहना चाहूँगी थोड़े कोई खास देखो रेसिपी की जानकारी है या कोई किसी खास चीज़ की जानकारी है ना जी, फोटोज भेज सकते हो अपने घर की उस कॉर्नर की जिते तुम बह के रेडियो सुनते हो या फिर कुछ भी करते हो, है ना जी, कोई खास कॉर्नर हो सकता है, सो वो तुम सू लिख के भेज सकते हो, टैक्सट फॉर्म के भेज सकते हो या फोटो भेज सकते हो, है ना जी। सो इस तो बाद चलो फिर प्रोग्राम के आप अगे वे हाँ, और गर्मी के दिनों की गल चल रही है और एक होर चीज़ है जो चेहरे को अपने फेस को ठंडक देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, है ना जी, सोने सोने। सो वह है जी मुल्तानी मिट्टी। और अमूमन आप की करते हैं कि बहुत सारे लोगों मैं देखती हाँ कि ना मुल्तानी मिट्टी जीड़ी है वह लगा के असी फेस से की करते हैं बहुत देर तक, जो तक वो पूरी ड्राई हो जाती है, सुक जाती है ना, उदों तक असी उस मुल्तानी मिट्टी नू लगा के रखते हैं। बट एक्चुअली एक्सपर्ट्स की कहते हैं कि ये नाल की है ना कि जिहड़ा अपने फेस का नैचुरल ऑयल भी है ना, वो भी मतलब एक जिहड़ा मॉइस्चर है अपने फेस के अपने चेहरे के अंदर, वो भी वो मिट्टी खिंच लैंदी है। सो एक खासकर टाइम हुंदा है, ठीक है, कदों मतलब किन्ने को टाइम लगानी है, किवें लगानी है या फिर उन्हों किवें हटाना है, हर एक चीज़ का तरीका है। और मुल्तानी मिट्टी की मैं गल कर रही हूँ, सो सॉन्ग तो बाद मैं तुम्हें दसदांगी कि किवें आप अप्लाई करिए, किवें नू हटाइए और किन्नी को देर आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, खासकर ड्राई जिहड़ी स्किन है उन्होंने और ऑयली स्किन वालों लिए। सो जेकर थोड़ी भी स्किन इदा दी है मेरे नाल जुड़े रहो। और मैं दोस्तों को कहना चाहूँगी कोई भी देखकर तुम मैं मैसेज कर रहे हो, उस प्रोग्राम से जुड़न की कोशिश कर रहे हो, है ना जी। सो कोई टिप्स ने जिमें तुम अपने घर में किमें साफ सफाई है ना वो रखते हो, की कुछ इस्तेमाल करते हो, या फिर कोई कुकिंग का कोई नुस्खा हैगा, है ना, कुछ बना रहे हो और इस चीज़ में किमें आप कुछ भी हो सकता है जानकारी, तो वो जानकारी साढ़े नाल शेयर करनी है जी। फिलहाल सुनते अगला गीत, स्टे ट्यून्ड।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो। और इस सॉन्ग तो पहला ब्रेक तो पहला गल चल रही थी जी मुल्तानी मिट्टी दी, है ना जी। कि आप पैक बना रहे हैं और किवे उन्हें फेस से लगा रहे हैं, बहुत एक तरीका होता है, यानी कि बस अपना पैक बनाया और उन्हें फेस से लगा के छड़ दिता, और जब पूरा ड्राई हो गया ना, बिल्कुल ड्राई हो, तो आप

सो क्यूटी बाई स्वीटी बाई या फिर जो मर्जी हो हाय हाय पाई तो मैंने याद आया जी क्यूट क्यूट पाई पाई चीज़ा होंदिया ने बड़ी प्यारी होंदिया है ना जी। और गर्मी दी छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चों की शुरू ही हो गई हैं, बस समझ लो आ गई है दस्तक दे रही है। और इन्होंने छुट्टियों के बच्चों भी अपने नाल लगा सकते हो कुछ ना कुछ नवा स्किल जीडिया ना बहुत जरूरी है नवी कुछ चीज़ सीखना। और जड़ियाँ इंस्टेंट चीज़ा होंदिया ने उन्होंने तो मज़ा ही कुछ होर होंगे। सो अज आप इंस्टेंट मेयोनीज जी है वो बना रहे हैं और इन्होंने चीज़ों के लिए मैं तुम्हें समान भी दस दिता हूँ तक की कुछ चाहिए सी जिमें कि काजू आप लेते सी एक कप हो गया है ना जी, नमक हो गया, पीली सरों का पाउडर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया और सिरका भी लेता है दो चमचे और नींबू का रस है ना जी। सो हूँ करना की है कुछ नहीं करना, सारिया चीज़ों ले लो और बस अपना जो मिक्सर ग्राइंडर वाला जो जार है ना वो सुट दो। हो बड़ा वधिया लगेगा है ना, एक एक तो बाद एक जी चीज़ लिती आप सारिया चीज़ों की गल कर रही हूँ। काजू जिड़े कि आप पे के रखे सके ठीक है जी और भिगो के रखे से दो घंटे इन्हों रखा से आप पानी से या तीन घंटे भी रख सकते हो कोई टेंशन नहीं है, नहाँ दो ना गर्मी का टाइम है, काजू भी बेचारे कह गर्मी लग रही है ना। सो काजू आप ले लिए और जो भी अपना नमक सीगा और पाउडर सीगा पीली सरों का और ऑयल ऑलिव ऑयल आप पा सकते दे विच दो तो तीन चमचे छोटे चमचे, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है स्किप कर दो ये वाला ऑप्शन। और वाइट विनेगर यानी सिरका और नींबू का रस और सारे नू ना एक सार मतलब मिला के और ग्राइंडर दे विच लगा देना एक राउंड और उदों तक राउंड लगाते रहने उदों तक इन्हों का एक जिहड़ा है वधिया कह लो कि इम्यूनिस जो तक सानू दिखनी शुरू ना हो जाए ना कि बन रही है हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट जो हो गया उदों तक इनू चलाना है ठीक है जी। चलो बस बन गई है ग्राइंडर दे विच आपां मेयोनीज होममेड और बड़ी इंस्टेंट वाली चीज़ है, लेकिन खास ख्याल रखना है जो आप होममेड मेयोनीज बना रहे हैं तो सिर्फ दो तो तीन दिन वध तो वध इनू बस दो तो तीन दिन यूज़ करना वो भी एयर टाइट कंटेनर दे विच रख के, नहीं कि मम्मी का पुराना स्टील का डब्बा लेता तो उस विच पा के रख दी, नहीं जी थोड़े जे समझदार बनना। सो एयर टाइट जो भी अपने कोल कंटेनर है डब्बा है बॉक्स है ना कुछ भी कह लो उसके विच पा के रखनी है। सो दो तो तीन इहदा जिहड़ा इक जिंदगी है ना इन्हों की वह दो दिन दिन ही है, पर साड़ी जिंदगी बहुत लंबी है और अगला गाना आ रहा है आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ स्टे ट्यून्ड।

सो ये जहाँ तक रंगीन ही है देखो, और FM रेनबो की दुनिया भी रंगीन है क्योंकि सात रंग है ना, रेनबो दे रंग और इन रंगा दे नाल बनता है जी। 102.7 FM रेनबो जलंधर और खुशियां का खजाना बनता लाइव रेडियो स्टेशन जलंधर। कुछ भी कह लो, रेनबो दे नाल जो दोस्त जुड़ जाते हैं उन्होंने ही अपने ही कह लो कि मैं इस करके जुड़िया या फिर मैनू ये प्रोग्राम पसंद है या फिर मैनू कुछ भी पसंद है ना, लेकिन रेनबो सारे पसंद है और रेनबो दे नाल जुड़ के अपने जिहड़े प्रोग्राम ने इंजॉय करते हैं। सो फिलहाल इस टाइम चल रहा है 1:10 और 5 सैकेंड तेरे जब थोड़े नाल जुड़ी हुई है, तो आप दोवें मिलकर इंजॉय कर रहे हैं जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़।

0: की क्या मैंने बुलाया? लगता है ना कि कह रही है आ जा, है ना? और जो तो आप किसी ने आवाज देना है, यही बुलाने है, आ जा, आ भी जा। और एफएम मेनबुद फिलहाल मैं आई हुई हाँ जी, रिचा के नाल तो इन्जॉय कर रही हूँ आज मिड डे मेलोडीज़ और ये सफ़र भी है ना जी। और एक मैं हूँ, एक तू, और तुसी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। देखो जी, जलंधर के दोस्त भी जुड़े हुए ने साढ़े नाल, अमृतसर के दोस्त भी जुड़े हुए ने, और पता नहीं कितने कितने जेडे दोस्त ने एफएम मेनबुद ट्यूनिंग करके इस टाइम प्रोग्राम इन्जॉय करे ने मेरे नाल। चलो फिर हूँ समा हो गया अगले गीत का भी, और मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे ने नाल ही नाल साढ़े हाँ जी गाने के विच। स्टे ट्यून्ड।
1: Papaya, papaya, papaya!

खैर आज ना तो संडे है और ना ही मंडे है, बट फिर भी म्यूजिकली जर्नी चल रही है और अजिहे जड़े गीत होंगे ना वाकई मैनू तो बड़े पसंद है। और मैंने लग रहा है जिन्हें भी दोस्त इस टाइम इस गीत सुन रहे हैं और संगीत का जो सिलसिला चल रहा है जी FM रेनबो से सो वधिया लगता है ना। और इस गीत के जरिए ही सही चलो थोड़ी जी फीलिंग आप भी ले लें कि संडे बहुत नज़दीक है और संडे नू भी मिलेंगी तुहानू। मैं फिलहाल मिल रही हूँ जी इतने ही इस टाइम स्टूडियो के रिचा के नाल कर रहे हो प्रोग्राम इंडिया मेलोडीज़ इंजॉय स्टे ट्यून्ड।

0: हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार चल।
1: सो प्यारा जहा गीत और इन्ना सोहना जहा गीत इंजॉय करो तुसीं 102.7 FM रेनबो जलंधर नाल ही नाल 103.6 FM अमृतसर दे दोस्त भी साडे नाल जुड़े हुए ने और किते किते तुसीं जुड़े हुए हो। अपने आप नूं काउंट कर लो, लिस्ट बहुत लंबी है। हुण मैनूं तां नहीं पता पर हाँ अपने मन दे विच तुसीं अपने आप नूं

अमल जरूर कर सकते हो। सो मन दे नाल ख्याल आया, देखो बहुत सारे ख्याल चलते रहते ने दिल से, है ना, कि चलो इत्थे चलिए उत्थे चलिए, हैलो हाई करिए, अपने दोस्तों दे नाल मिलिए, और इस दे नाल ही ये जिहड़ी जिंदगी है ना, ये जिहड़ी लाइफ है, ये आपां इंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ां है ना, इस चीज़ नूं आपां देखिए, एक्सैप्ट करिए, और बस जिहड़ी प्रॉब्लम्स है ना थोड़ा जिहा इग्नोर कर दिए उसनों। फिलहाल इग्नोर, मैं अगले गीत नूं बिल्कुल नहीं कर रही। स्टे ट्यून्ड।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Once again, welcome back, आजी 102.7 MHz से आकाशवाणी ते जलंधर दे दोस्त साडे नाल जुड़े होए ने, और नाल ही नाल 103.6 MHz से आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्त VS टाइम साडे नाल जुड़े होए ने, जो कि दोपहर दे 3 बजे तक जुड़े रहेंगे। और 51:52 ते 12 सेकंड ते जा रही है जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़।

0: हाथ लेके हाथ में तू साथी बन जा, दुनिया के गम को तू दिल से भुला।
1: जिंदगी हसीन है झूम झूम जा, खुशियां मना ले गुनगुना।

खुशियां मना ले गुनगुना तू मुस्कुरा, हाथ लेके हाथ में तू साथी बन जा, दुनिया के गम को तू दिल से भुला, जिंदगी हसीन है तुम जा, खुशियां मना ले गुनगुना।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

शिकवा तो है बहुत मगर किससे गिला करें, शिकवा तो है बहुत मगर किससे गिला करें, तू भी बदल गया जमाने की तरह। अहमद फराज होना ने ये बहुत प्यारी शायरी लिखी है। कहते ने कि दिल में शिकायतों तो बहुत हैं, लेकिन अब किससे शिकायत करो। जिसे वक्त के साथ पूरी दुनिया बदल जाती है, वैसे ही अब तुम भी पूरी तरह बदल गए हो। लो जी, सानू एक होर शायरी पहुंच चुकी है। कहते ने तुम गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा ले, चलो बस हो गया मिलना, ना तुम खा ले ना हम खा ले। वाजी वाह, क्या बात है जी, बहुत खूब है। ये सानू भेजी सी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिलियाँ सुल्तानपुर लोती होना। तो सानू ये भेज रहे से शहरी जिथे इन्होंने बड़ा खूब किया कि चलो कि तुहानू की गहरा तो फुरसत ना सी खाली हाँ, इस करके इत्थे सिलसिले खत्म कर दो, ना तू खाली ते ना मैं खाली। लिखते ने चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं, चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं, पुराने दर्द से खुद को

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। आज का विषय है सिर की चोट, कारण, उपचार और बचाव, यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सिर पर लगी चोट कभी मामूली लग सकती है, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप भी ले सकती है। गिरने, सड़क दुर्घटना, खेलकूद या किसी अचानक हादसे में सिर की चोट आम बात है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी होता है। आज हम जानेंगे कि सिर की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे बचाव कैसे संभव है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। आप इससे पहले लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स, न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी।
2: हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप News on AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर की चोट यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिर की चोट, हेड इंजरी किस किस प्रकार की हो सकती है।
3: सबसे पहले तो मैं फिर से शिल्पा जी आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपने सारे श्रोतागण को भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने पूछा हेड इंजरी क्या होती है। हम इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक साधारण भाषा में और हम दूसरी मेडिकल भाषा में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं। साधारण भाषा में कोई भी चोट जब सिर में लगती है, चाहे वो स्कैल्प में हो या कि बाहरी परत होती है, या फिर स्कल में हो या फिर अंदर ब्रेन में हो, तो कोई भी चोट इसमें लगती है तो हम इसे कह सकते हैं कि हेड इंजरी का कंपोनेंट है। मेडिकल भाषा में हम इसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है, मात्रा कितनी गहरी है, इस हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अक्सर हेड इंजरीज के केसेस का आमतौर पर क्या आंकड़ा रहता है और कौन कौन से एज ग्रुप या सिचुएशंस में ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं?
3: ये प्रश्न बहुत जरूरी है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी है, जब तक हमें हमारे देश में हेड इंजरी के प्रॉब्लम के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसके आंकड़े के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सच में देखा जाए तो हमारे देश में, दुनिया में जितने भी ज्यादा हेड इंजरी एक्सीडेंट्स होती हैं, डेथ्स होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारे भारत में होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एपिडेमिक है, एक तरीके की महामारी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखा गया है कि हर साल हमारे देश में लगभग 15 से 20 लाख लोग हेड इंजरी से ग्रसित होते हैं, और इस 15 से 20 लाख के आंकड़े को अगर हम फर्दर डिसेक्ट करें तो हम देखते हैं कि हर रोज लगभग 4000 हेड इंजरीज होती हैं, हर घंटे 2000 और हर मिनट 3 हेड इंजरीज होती हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त 3 हेड इंजरीज हो चुके हैं, और दुख की बात यह है कि हर साल इस हेड इंजरी की मात्रा हमारे देश में 6-8% बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की महामारी है। प्रॉब्लम ये है कि ये हेड इंजरी किन में होती है। ये हेड इंजरी अक्सर यंग एज, 20-40 साल के नौजवानों और नवयुवतियों में होती है। तो इस वजह से ये एक ऐसे प्रोडक्टिव एज होती है जहां पर हेड इंजरी की वजह से ना केवल वो इंसान बल्कि उसका पूरा फैमिली अफेक्ट होता है। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो लगभग एक साल में 2 लाख के आसपास हेड इंजरीज से डेथ होती हैं, और हर दिन लगभग 400 डेथ्स होती हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हेड इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे देश में सबसे ज्यादा है।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये यंग एज में या इसमें ज्यादा होती हैं, लेकिन इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन एक

0: कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: जी, मैं विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर
0: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी।
1: सर ये जैसे कोई कुश्ती उश्ती में या बॉक्सिंग में सर जैसे लग जाते हैं मुक्के उक्के, जैसे कंकशन सा हो जाता है,
2: बिल्कुल।
1: तो सर ये कितना खतरनाक है और कितने समय के बाद हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए?
2: अच्छा, आपने बताया आपका नाम विजय है,
1: हाँ जी, हाँ जी
2: आप बॉक्सर हैं।
1: सर, खेलता हूँ मैं कुश्ती
2: अच्छा, वेरी गुड,
1: वगैरह।
2: वेरी गुड। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जितने भी हमारी गेम्स होती हैं, खासकर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में हेड इंजरी बहुत कॉमन चीज है। आपने सुना होगा मोहम्मद अली के बारे में, है ना? बहुत अच्छे बॉक्सर थे, तो अपनी सारी लाइफ उन्होंने बॉक्सिंग करी, बाद में उन्हें पार्किंसन डिजीज हो गई थी। होता क्या था कि बॉक्सिंग में, आप सब जानते हैं, उस टाइम लोग बिना किसी स्पोर्टिंग और सेफ्टी गियर के बॉक्सिंग करते थे, तो सिर में लगातार चोट लगा करती थी। तो उस चोट के लगते लगते, बार बार लगते लगते, उन्हें दिमाग के कुछ पोर्शन में डैमेज हो गई और उसकी वजह से उन्हें पार्किंसन की डिजीज हो गई। तो ये ज़रूरी है कि जब हम बॉक्सिंग करते हैं या कोई भी ऐसे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स करते हैं, तो जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो ज़रूर पहने। और अगर चोट लगती है तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे, कि जिसकी वजह से चलते हमें केयरफुल रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो एक मेडिकल हेल्प और कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचाने अगर हम चाहे ड्राइव कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चोट लग गई है, तो हम कैसे पहचाने कि ये चोट सामान्य है या गंभीर है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
2: हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर चोट लग जाती है, घर में बैठे हैं, सिर किसी कोने से लग गई, अब क्या करें? या फिर मान लीजिए कोई गेम्स खेल रहे हैं, या फिर कोई बाइक चला रहे हैं, या कोई भी ऐसे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस चोट में कौन सी चोट ऐसी होती है जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, और हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हमें मेडिकल ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए, कोई भी चोट लगती है, उस चोट लगने के बाद अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज करता है, बेहोश हो जाता है, चोट के पश्चात वॉमिटिंग्स होती हैं, या चोट लगने के बाद दौरे पड़ते हैं, या चोट लगने के बाद काफ़ी देर तक, लगभग आधा घंटा तक इंसान को होश में नहीं रहता, उसकी याददाश्त नहीं रहती कि क्या हो गया था मुझे, या चोट लगने के बाद शरीर के किसी अंगों में किसी तरीके की कमजोरी, जिसे हम फोकल डेफिसिट्स कहते हैं, या फिर मान लीजिए नाक से CSF, हम कहते हैं ब्रेन का एक वाटरी फ्लूइड लीक करता है, या फिर सीवियर ट्रॉमा लगी है चेहरे में, फेस में, और किसी पेशेंट में अगर, जिसे हम प्यूपिल्स कहते हैं, वहाँ पर एसिमेट्री आती है, या कोई पेशेंट चोट लगने के आधे घंटे बाद भी होश में नहीं आता है, तो अच्छा है कि किसी मेडिकल कंसल्टेंट से या किसी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह कर लें।
0: इसके बारे में हम आगे भी और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये गाना रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये हमें मैसेज देता है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़े। और ये सॉन्ग आज का हमारे डॉक्टर साहब अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं, उनकी पसंद का है ये गाना। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो।
2: हाँ
0: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: तो पहले तो एंकर मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और राजेंद्र कुमार डॉक्टर साहब को, राजेंद्र सिंह का नमस्कार।
2: अच्छा, आप भी राजेंद्र हैं? नमस्कार जी।
1: जी सर, इत्तेफाक से मेरा नाम भी राजेंद्र है सर।
2: अच्छा, अच्छा।
1: तो सर मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे प्लीज, कि किसी पेशेंट को या शख्स को कैसे पता चले कि उसे ब्रेन फीवर है, ब्रेन फॉग है, या उसके दिमाग तक जो है ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि मेरे इन दिनों मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे फ्रिज कूलिंग मांगता है ना, उस तरीके से अगर मैं फ्रिज सिर को ठंडे पानी से धोऊं, आंखों हाथ मुंह को ठंडा कपड़ा सिर पे बांध लूं, तो दिमाग काम करता है, पर अगर वो कपड़ा सूख जाए तो फिर पानी सूख जाए, फिर वही प्रॉब्लम हो जा रही है। क्योंकि मुझे इन दिनों स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। एक सवाल तो मेरा ये है, 89-90 है मेरी बाई हाथ, वो सॉरी किसी फ्रेंड ने मेरे बाई हाथ के ऊपर जो है 10 फुट जो है वो मार दिया था, 16 पाउंड का गोला। उस वक्त जो है वो वहां पर एक गोला टाइप का बन गया था, पर तब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम बाई हाथ पे बॉल लगी, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 2004-05 मेरी सिर के पीछे वाले भाग में एक बॉल आके लगी, रोहिणी में कहीं खड़ा था इस टीचर के साथ अपने, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। तो मैं जाना चाह रहा हूँ कि पुरानी चोट उभर के आई है या कुछ हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी सर।
2: अच्छा, आपने काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। एक तो आपने कहा कि कुछ ब्रेन फीवर या ब्रेन फॉग है ना, तो आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो देखिए ये जो आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं इसको हम पूरे डिटेल में तो नहीं समझ सकते इतने से छोटे से वार्तालाप में, लेकिन जहाँ तक ब्रेन में ब्लड पहुँचने की बात है, इसमें आप निश्चिंत रहिए, जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ना केवल आपके ब्रेन में ब्लड जा रही है बल्कि आप हर चीज़ सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ब्रेन फॉग कभी कभी ऐसे कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए इस वक्त मान लीजिए हम हेड इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चोट लग गई सिर में, तो एक तरीके से जैसे कनकशन बोलते हैं, जैसे पहले श्रोता ने कहा था, थोड़ी देर के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि सिर में दिन में तारे नजर आ गए, अचानक से आपके ब्रेन का सोचना, आपका फंक्शन करना थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया, आपको याद नहीं रहता कुछ, तो उस तरीके की चीज़ों को हम फिलहाल एक तरीके से ब्रेन फॉग कह सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने आप नॉर्मल आ जाती है। तो ब्रेन फीवर वाली ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ब्रेन फीवर टोटली अलग कंडीशन होती है। आपको अगर सिर में आप कहते हैं कि ठंडे पानी से कपड़ा या कोई टाइट बांधे तो कुछ फ़ायदा होता है, कुछ ठीक लगता है, तो हो सकता है आपको कोई ब्लड प्रेशर या कोई इससे ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार किसी डॉक्टर से बात करके उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेशन या जाँच जो भी कर लेते हैं वो करवा लीजिए। और रही बात आपकी कोई बहुत पुरानी इंजरी जो आई के आसपास हिट हुई थी या सिर में लगी थी, उससे इतने टाइम बाद कोई ऐसी कोई वजह जनरली होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई चोट लगी हो रिसेंट में, कुछ हफ्ते या एक दो या तीन महीने पहले चोट लगी हो, फिर उसके बाद आपको ये तकलीफें हो या किसी भी पेशेंट को, तो एक कंडीशन होती है कि

0: ब्रेन के अंदर सबड्यूरल हेमरेज होती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लड कलेक्ट होता है, और जब उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इस तरीके की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी हालात में आप एक बार डॉक्टर के साथ किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़े। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास, ये है सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, लिखते हैं सर नमस्कार जी, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जी, हमारे जानने वाले 2011 से कोमा में है सर, उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद है उनका, कुछ हो सकता है, सब जगह दिखा चुके हैं। और फिर आगे लिखते हैं सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का आपका।
0: सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शायद सहानुभूति कहूँ, मुझे हिंदी बहुत तरीके से मालूम नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। हम न्यूरोसर्जन्स अक्सर ऐसे कंडीशंस देखते हैं जहाँ पर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यंग नौजवान लड़के 20 30 40 साल के लड़के, उनके जब एक्सीडेंट हो जाती है तो ना केवल वो फैमिली, ना केवल वो पेशेंट, बल्कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, बच्चे और जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, सभी को बहुत बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। अब रही बात 2011 की इंजरी है, तब से लेके अगर वो कोमा में है तो कोमा, हालांकि मैं एग्जैक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि कोमा एग्जैक्टली क्या है, हम मेडिकल टर्म में अलग अलग तरीके से इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, पर मैं समझता हूँ कि शायद अभी भी उन्हें केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे हालत में पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 2007 में जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह हैं, उनके सुपुत्र का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने इतना महान कार्य किया कि इस तरीके से जिन भी पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है और उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो इन सब पेशेंट्स के लिए उन्होंने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे जोधपुर में है, हमारे दिल्ली में भी है, लाजपत नगर में, नोएडा में है, पटना में है, और ऐसे कई तमाम सेंटर्स में उन्होंने ऐसे सेंटर्स खोले हैं जहां पर ऐसे पेशेंट्स को, जिनको न्यूरो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है चोट लगने के बाद, जो कोमा या सेमी कोमा में होते हैं, या जिनको इस तरीके से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो उनको केयर करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार अगर आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप नोएडा में हैं तो नोएडा में भी ये फैसिलिटी है, इधर से हमारे लाजपत नगर में भी ये फैसिलिटी है, तो उस फैसिलिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और वहाँ पर एक बार न्यूरोसर्जन पूरे डिटेल्स से देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या उन्हें किस तरीके से रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: मैं एक सवाल पूछना सर ना
0: जी।
2: अक्सर मरीज को कोमे में जाने की स्थिति कब आती है सर? अब मैं एम्स में, जब आपके लोग हर दिन जो है प्रेजेंट करते हैं ना
0: जी जी,
2: तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई बार सन 98 में मैं एम्स में कई बार गया, तो वहाँ सीढ़ी में भी चढ़ने में भी मतलब इतना भीड़ हो जाती थी, और लिफ्ट में भी इतना भीड़ हो जाती थी। लेकिन अब स्थिति क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है यह हर दिन अच्छा चल रहा है, बढ़िया है
0: जी।
2: लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ ना, कोमे में जाने की स्थिति कब होती है सर, बस यही पूछना।
0: सबसे पहले तो रघुवीर जी धन्यवाद फोन करने के लिए। आप उत्तराखंड से हैं तो मैं, अगर आप बुरा न माने तो पहाड़ी कह सकता हूँ।
2: कुछ नहीं,
0: बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं हिमाचल से हूँ।
2: अच्छा, थैंक यू सर।
0: तो मैं लगभग 3 दशक तक एम्स में रहा, तो अच्छा लगता है। तो रही बात कोमा की, देखिये जब भी सिर में चोट लगती है तो कितनी सीरियस और सीवियर इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कोमा में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, सिर में सबसे बाहर स्किन होती है, फिर उसके नीचे हड्डी होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ब्रेन के बाहर कुछ परतें होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो सबसे अंदर ब्रेन होता है, तो सबसे अंदर ब्रेन का भी कुछ पोर्शन जो सबसे डीप होता है, जब उनमें डैमेज होती है या उनमें चोट लगती है या उनमें दबाव होता है, तब पेशेंट जो है बेहोश होता है, और वो दबाव बहुत लंबे टाइम तक रहा हो, डैमेज हो गया हो परमानेंट, तब पेशेंट कोमा में जाता है। तो कोमा जो है
2: सबसे, वो मशीन अपने आप काम करता है डॉक्टर साहब?
0: कौन सी मशीन?
2: जो कोमा में जो डालते हैं मरीज को, तो अच्छा, अपने आप काम करता है।
0: आप वेंटिलेटर की बात करते हैं?
2: नहीं, जब हम कोमे में डालते हैं मरीज को, अपने आप काम करता है वो।

0: मतलब जो वो कॉमा में जिसने ड्यूरेशन के लिए है तो वो कैसे चल रहा है, मतलब कैसे जितनी देर सर्वाइव कर रहा है?
1: आपका मतलब कोई मरीज कॉमा में चला गया तो उसके अंदर की मशीन कैसे चलती है, ये कहना चाहते हैं?
2: बस मतलब अपने आप मतलब उसको इंप्रूव करता है, मतलब अपने आप ही करता है मशीन।
1: हाँ, तो जो उस इंसान का जो अंदर की कुछ मैकेनिज्म्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को कंट्रोल में रखती हैं, उन्हें अलाइव रखती हैं, लेकिन इंजरी कितनी भी है वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार इंजरी इतनी गहरी होती है कि हमें पेशेंट्स को बाहर से, चाहे उन्हें सांस लेने की हो, चाहे कोई दवा की हो, ब्लड प्रेशर की जरूरत हो, सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें मान लीजिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर इन सब की जरूरत पड़ती है, हमें देना पड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत सीरियस इंजरी है। लेकिन कोई इंसान अगर मान लीजिए बिना किसी सपोर्ट के अपने बेसिक लाइफ को कंट्रोल कर सकता, स्पोर्ट में रख सकता है, तो वो सीवियरिटी इंजरी की थोड़ी कम होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि लगभग आप ये सोचे कि 6 महीने से लगकर 2 साल तक कुछ ना कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की आशा हमेशा रहती है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हेड इंजरीज कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इस पर अभी हम आपसे जानेंगे कि इसके सबसे सामान्य कारण क्या है, कॉजेज क्या है। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: श्याम सुंदर, ग्राम जिलंधर।
0: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार, और 77
0: अच्छा जी
3: उम्र, 8 साल से मैं पार्किंसन की दवाई ले रहा हूँ।
0: सर आपकी आवाज है ना कट रही है, तो आप
1: पार्किंसन की दवाई ले रहे हैं?
3: पार्किंसन की बोल रहे, मुझे डॉक्टर ने यही बोल रहे।
1: अच्छा जी,
3: ना हाँ जी, 8 साल हो गए अब मुझे, अब हाथों में कंपन कंपन, बस इतना बता दें इलाज मेरा सही कर रहा है, हाथ का मेरे काम कामते हैं बस,
1: हाथ कामते हैं। अच्छा, आप जलंधर से कॉल कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम वैसे हेड इंजरी पे है, पर आपने आपके प्रश्न को हम अगर समझ सके हैं तो आपने ये कहा कि आपके हाथों में ट्रेमर्स है और आपका पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है ना? तो हाँ, तो पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है, तो देखिए शुरू शुरू में मेडिसिन चलती हैं और मेडिकेशन से काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें, तो मेडिकेशन से अगर बेनिफिट होता है तो वो सही रहता है। और पार्किंसन डिजीज में एक सर्जरी की भी पूरी हमारे पास स्टैंडर्ड मतलब स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी होती है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है उससे। तो पहले आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए।
0: तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर साहब, तो इसके सबसे सामान्य कारण हेड इंजरीज के सिर की चोट के क्या रहते हैं?
1: तो ये हेड इंजरी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए जब हम हेड इंजरी की बात करते हैं तो कौन कौन इस हेड इंजरी में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो जिस इंसान को चोट लगती है, फिर दूसरी बात होती है कि वो किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ है कि हमारी रोड्स। तो हेड इंजरी की सारी वजह ड्राइवर्स में, व्हीकल में और रोड्स में है। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें तो इस वक्त हम मेनली इसी पर फोकस कर रहे हैं, बाकी और कोई कारण होते हैं जैसे किसी हाइट से गिर गए या किसी गेम्स में हेड इंजरी हो गई, वो अलग बात है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो लगभग 60-80% केसेस ऑफ हेड इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले बात आती है ड्राइवर्स की। तो ड्राइवर्स की जब बात आती है हेड इंजरी के कॉज के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि अगर ड्राइवर सही नहीं हो तो हेड इंजरी के कॉजेज बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन ड्राइव करता है, क्या वो सही तरीके से ड्राइविंग के लिए एक्सपर्ट है, क्या उन्होंने लाइसेंस सही तरीके से लिया। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस भी है, आपको ड्राइविंग भी आती है, तो आप कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे आप रूल्स फॉलो करते हैं, क्या आप लेन ड्राइविंग करते हैं, क्या आप सीट बेल्ट पहन के रखते हैं, अगर आप 2-व्हीलर ड्राइव करते हैं तो क्या आप हेलमेट पहनते हैं, क्या आपका हेलमेट सही मेक का है, क्या आप हेलमेट सिर में रखने के बाद अच्छे से अपने नेक से स्ट्रेप करते हैं, क्या आप ड्रिंकिंग और ड्राइविंग करते हैं, या फिर आप रॉन्ग साइड में अक्सर हम देखते हैं लोग ड्राइव करते हैं, या फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि आज के तारीख में लोग ड्राइव करते हैं मगर साथ में मोबाइल में बातें भी कर रहे हैं और मोबाइल में टेक्स्टिंग भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जैसे हमारे रोड्स हैं, हमारी रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है, हमारे रोड्स पर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि रोड्स में ऐसा ना हो कि कोई एनिमल्स आ रहे हो, 2-व्हीलर्स, फास्ट लेन, स्लो लेन, ये सब चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी को होनी चाहिए। तो इसके अलावा व्हीकल्स की क्वालिटी जैसे एयर बैग, सीट बेल्ट पहनना।

0: ये सब चीजें, इन सब चीजों के अगर हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स और हेड इंजरी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: यानी हमें सही से ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपना भी प्रिकॉशन ले सके, अपने प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और अपना बचाव कर सकेंगे। इस पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र और शिल्पा मैम को इस विषय को लाने के लिए थैंक्स। डॉक्टर साहब, यंग बच्चे बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है, और उस समय क्या उपचार होना चाहिए, और बच्चों को अपनी तरफ से एक डॉक्टर के नाते समझा दें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: नमस्कार नरदेव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक यंग बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा है लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहा है। तो इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन बच्चों को। अगर आपने मेरे प्रोग्राम को सुना होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता ने कहा था कि एक यंग लड़का जिसे एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, तब से लेकर लगभग 15 साल में अभी भी कोमा में है। तो उनके सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटस है, कितनी प्रॉब्लम होती है आप समझ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को कोई भी काम करते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी हमारे जो इसके सूत्रधार हैं, बच्चों के स्कूल करिकुलम में एक तरीके से ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चे जो है इसके दुष्परिणाम के बारे में जान सकें। रही बात ट्रीटमेंट की कि उस वक्त क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त बच्चे की हालत क्या है, कितनी गहरी चोट लगी है। जैसे हमने कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें मालूम लगता है कि हमें पता लगता है कि ये शायद सीरियस हेड इंजरी हो सकती है, जैसे बेहोश हो जाना, उल्टी हो जाना, या फिर नाक से कोई CSF का आना, या कोई दौरे पड़ना, या फिर ड्राउजी हो जाना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई किसी ऐसी जगह पर है, कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है, या कहीं रास्ते में है, कहीं दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करे, या कोई दे रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करे, उसको क्या दे?
2: तो ये हेड इंजरी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि रोड्स में और सिटीज़ में ही हो। आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हमारे लीडरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए। और हमारे प्रोग्राम में, खासकर स्कूल के बच्चों में, हम जितनी जल्दी इस तरीके की नॉलेज इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें, इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा था, पीछे हमारे जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह जी ने जो एक न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया है, तो वो लोग सिर्फ ना केवल ये काम करते हैं बल्कि वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाने के लिए सारे हिंदुस्तान में टाइम टाइम पर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हमारे लीडरान को, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को, और हमारे जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको इस तरीके के प्रोग्राम को लेके, जितने भी पब्लिक हैं, चाहे पुलिस वाले हों या कोई कॉमन पब्लिक हो, उन सब चीज़ों को कोई भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होती है, तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है। पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए ताकि, मान लीजिए, एक गाड़ी का कहीं पर दूर दराज एरिया में एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोकल के लोग टू सम एक्सटेंट, मान लीजिए, उनको इसके बारे में मालूम है कि कैसे मरीजों को किसी पेशेंट को किस तरीके से सेफ वहां से एक्सट्रिकेट किया जाए, निकाला जाए, और फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। तो ये सब चीज़ें एक कॉमन सी साधारण सी बातें हैं जो एक जनरल पब्लिक को आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस पर विचार करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार होता है कि चोट लग गई, अगर गिर गए या कहीं पर भी चोट लगे, लगता है कि ठीक है, लेकिन कई बार उसके आफ्टर इफेक्ट्स लगते हैं, या फिर लगता है कि अंदरूनी चोट है, तो हमें कैसे पता लगेगा और उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए?
2: जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई ऐसे कोई चोट लगती है सिर में, तो दो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, क्या ये साधारण चोट है या फिर हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक अगर डॉक्टर या कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो कंसल्ट करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें लगता है कि हो सकता है कि दिमाग में गहरी चोट लगी हो, या चोट लगने के, दिमाग के अंदर चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो। तो वो ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे, मान लीजिए,

0: ये चोट लगने के बाद कोई पेशेंट या कोई इंसान कोई 5-10-15 मिनट तक बिल्कुल बेहोश रहा, या फिर चोट लगने के बाद उनको उल्टियां शुरू हो गई, या फिर दौरे पड़ गए, या फिर मान लीजिए कि कहीं से सिर से कहीं से जिसे हम CSF कहते हैं उसके लीक होना शुरू हो गया, या कोई फोकल डेफिसिट यानी कि मान लीजिए हाथ में पाँव में टांग में कहीं पर एकदम से कमजोरी आ गई है। तो इस तरीके की कोई भी अगर कोई घटना हो तो ऐसे हालत में हमें तुरंत बिना किसी देरी किए न्यूरोसाइंसिस से रिलेटेड कोई भी सेंटर हो तो वहाँ पर जरूर हमें जाना चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: जी, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैं राजकुमार छावला से बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: मेरी प्रॉब्लम ये है जी, मेरे कुछ
0: रिक्वायरमेंट है, एक्सरे करना है या फिर CT स्कैन करना है, तो वो सब चीज़ें वो सब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार होता है कि इंसिडेंट हो गया, तो अगर मेजर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है, माइनर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है?
0: हाँ जी, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले न्यूरोसर्जन पेशेंट को इवेल्युएट करता है, और पेशेंट को जनरली वो न्यूरोसाइंसिस के टर्म्स के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हेड इंजरी डिस्क्राइब करता है कि पेशेंट किस ग्रुप में है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी का वजन लेते हैं तो हम कहते हैं 30 किलो 40 किलो 50 किलो, तो उस तरीके से जब हेड इंजरी की मात्रा होती है तो हम उसके लिए एक स्केल यूज़ करते हैं, उसे हम GCS कहते हैं, मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। तो उसमें हम पेशेंट्स को पॉइंट्स देते हैं, सबसे कम पॉइंट्स होता है 3 और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होती हैं 15। तो इस किसी पेशेंट में कितने पॉइंट्स बनते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो माइल्ड पेशेंट्स में जिनमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक रहती है, उनके 15 में से 15 नंबर्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन मान लीजिए कोई ज़्यादा चोट नहीं लग रही, कोई फ्रैक्चर के चांसेस नहीं है, तो सिंपल NLJ6 मतलब दर्द की दवाई, अगर कोई चोट कहीं पर टांके लगने की ज़रूरत हो तो वैसे करके भेज सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर है या किसी सिर के अंदर ब्रेन में डैमेज नज़र आती है और ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट नज़र आता है, तो उसकी क्या साइज़ है उस हिसाब से न्यूरोसर्जन डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करिए या फिर उनको ऑब्जर्व किया जाए, तो उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट चलती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो जैसे कि आपका ऑपरेशन हो गया या सर्जरी हो गई, तो ये किस किस केसेस में करी जाती है और इसके बाद रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा तो 3 चरण होते हैं किसी भी हेड इंजरी को। अब हम बात कर रहे हैं मान लीजिए किसी को सीरियस हेड इंजरी है, तो पहला चरण होता है जैसे प्री हॉस्पिटल केयर, जहाँ पर इंजरी भी वहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड्स बाई स्टैंडर्ड्स, अक्सर हमारे यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो पेशेंट्स को उठाते हैं या लेके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो पहले उनको ट्रेंड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर कर सकते हैं जिसकी चलते पेशेंट को फर्दर इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो गोल्डन आवर में पेशेंट हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, तो हॉस्पिटल में पहुँचने के पश्चात जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मान लीजिए पेशेंट को ऑपरेशन की डिसीजन होता है तो उसके कुछ वजह होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन में जैसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहते हैं, ब्रेन की कुछ झिल्ली होती है उसके बाहर क्लॉट है या उसके अंदर क्लॉट है या ब्रेन ही डैमेज हो गया, तो ऐसे हालत में क्लॉट्स को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे हम क्रेनियोटमी कहते हैं, स्कल खोल के उस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है। कई बार ब्रेन में चोट लगने के बाद सूजिश आती है, तो उस सूजिश को एकोमोडेट करने के लिए हमें ब्रेन में और जगह बनानी पड़ती है, तो हम उसे ड्यूराप्लास्टी कहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक न्यूरोसर्जन करता है।
1: तो क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं?
0: अब जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन जरूर होती हैं। अब जब भी हेड इंजरी होती है उस प्रॉब्लम्स के या कॉम्प्लिकेशन के दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जब चोट किसी को लग गई तो लग गई, ब्रेन डैमेज हो गया तो हो गया, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि चोट लगने के बाद अगर जल्दी से पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट आवर या गोल्डन आवर में, तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि फर्दर सेकेंडरी इंजरी ब्रेन में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रेन के अंदर किसी को बहुत बड़ा क्लॉट है, तो उस क्लॉट की वजह से बाकी के नॉर्मल ब्रेन में प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से नॉर्मल ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, तो ज़रूरी है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है उस क्लॉट को बाहर निकाला जाए। तो ये प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करना, प्राइमरी इंजरी तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इंजरी ही ना हो, लेकिन एक बार हो गई तो सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स का रोल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर पेशेंट को इंजरी हुई है उस तरीके से पेशेंट्स को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी के मोटर एरिया में दिमाग के ऐसे हिस्से जहाँ

0: बॉडी का कंट्रोल होता हो तो वो डैमेज हो गया तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर राजेंद्र एंड मैडम गुप्ता, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस या एंजाइटी हो तो इमीडिएटली माइंड कैसे काम कर सकते हैं टू कम्पोज वन सेल्फ? शिवम कनेक्टेड फ्रॉम जर्मनी।
0: नमस्कार शिवम जी, क्या टाइम है अभी जर्मनी में?
1: ये मैसेज है हमारे पास। हाँ,
0: ये प्रश्न आपका बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी तो कैसे अपने आप को कंपोज करें। तो आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे। देखिए, इसका सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो इसके लिए हम सिंपल अगर हमारे अपने पुराने योगिक या वैदिक स्टाइल में जाएं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं, वही फॉलो करना है। मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट चीज़ है। कुछ देर के लिए जैसे आप लंबी लंबी सांस लीजिए, 5 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 1 से 10 गिनिए, और किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है या आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आई एम श्योर कुछ देर में, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनट में आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी बहुत लेवल तक कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो अक्सर गिर जाते हैं, तो जब भी गिर जाएं लगता है माँ बाप को डर लगता है कहीं उनके सिर पे चोट तो नहीं लग गई, तो क्या हर बार डॉक्टर को कंसल्ट करें या कुछ ऐसे स्पेशल सिम्टम्स हैं कि हाँ जब हमें लगे कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और कई बार होता है कि हम कुछ घरेलू उपचार भी देने लगते हैं कि हल्दी वाला दूध दे दिया कुछ इस तरह से, तो ये कितना सही है?
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बार छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ लक्षण, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे मान लीजिए चोट लगने के बाद बेहोश हो जाते हैं या दौरे पड़ सकते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ें होती हैं तब तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज़ मान लीजिए खेलते वक्त किसी को हल्की सी चोट लगी, छोटा सा अगर स्किन में कहीं पर, स्कैल्प में कहीं हल्का सा कट लग गया और पेशेंट वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को अगर इस तरीके की दूसरी तरीके की सिम्टम, जैसे मैंने कहा, अगर उस तरीके की बात होती है तो फिर आपको केयरफुल रहना चाहिए, तो मेडिकल कंसल्टेशन फिर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हेड इंजरीज पे, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर, तो जैसे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज जो हमें अपने पास रखनी चाहिए, अगर कोई गिर गया या किसी के चोट लग गई तो हम इमीडिएटली उसको पानी दें या उसके कोई कुछ लगा दें, मतलब हल्दी या लोग कुछ कहते थे ऐसे लगा दें, मतलब इमीडिएटली हम क्या करें, जो चीज हमें अपने पास हमेशा कैरी करनी चाहिए बाय द टाइम हम डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक रीच करें?
0: सबसे पहले तो साइकिलिंग करते वक्त ये सोच के कि हमें चोट लगे हमें क्या कैरी करना चाहिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब साइकिलिंग करते हैं या भी कोई बाइक चलाते हैं तो जैसे साइकिलिंग के लिए भी हेलमेट्स रिकमेंडेड है, नी गार्ड हो गए या एल्बो गार्ड हो गए, हाथ में ग्लव्स हो गए, तो इन सब चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा किसी भी नॉर्मल पब्लिक को कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ लेकर या रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर ये ज़रूर है कि एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर शुरू से स्कूल टाइम में ही हम सब लोगों को ये सब एक चैप्टर या कोई इस तरीके से प्रोग्राम्स होते रहें तो लोग पब्लिक अवेयर रहें कि भाई ये चीज़ हो गई है तो इस सिम्टम्स के चलते अब हमें आगे क्या करना चाहिए, बस इतनी सी नॉलेज, इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि कोई पेशेंट या कोई नॉर्मल इंसान कहीं चलते हुए बेहोश हो गया तो कोई भी राहगीर चलता हुआ आके CPR करना शुरू कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मीडिया ने इस चीज़ को ऐसा फैलाया कि सारे पब्लिक को अल्टीमेटली इससे हेल्प होता है। तो इसी तरीके से अगर हेड इंजरी के अवेयरनेस को भी अगर हम हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेसिक लेवल की नॉलेज आ जाएगी, तो हम सबको इन सब प्रश्न के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर कई बार होता है कि हमें हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, लगता है ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है अच्छा ये हो रहा है, तो हो सकता है जब चोट लगी थी उसकी वजह से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कितने समय तक हो सकता है उसके बाद नहीं होता? क्योंकि अक्सर अभी जैसे कॉल्स भी हमारे पास आई तो कई सालों तक उनको लगता है कि तब लगी थी तो शायद उसका अब इम्पैक्ट हो रहा है।
0: हाँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में अक्सर जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कुछ साल पहले हुआ था, ये तो शायद मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ हो, तो इसका क्लियर आंसर देना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा है कि जैसे माइल्ड हेड इंजरी होता है, पहले कहा जाता था कि माइल्ड हेड इंजरी मतलब पेशेंट होश में है, ऐसी कोई मेजर बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कि इवन पेशेंट अगर माइल्ड हेड इंजरी थी तब भी हो सकती है।

0: बाद में कोरिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक से नींद नहीं आना, याददाश्त का ठीक से नहीं रहना, या फिर चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की कुछ चीज़ें छोटी मोटी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि माइल्ड सी हेड इंजरी हुई थी कुछ साल पहले, उसके बाद अब और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो कोरिलेट करने लगते हैं, वो ज़रूरी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, शॉर्ट में आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि प्रिवेंशन के लिए वो क्या करें
0: इस पे? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि एक हेड इंजरी एक एपिडेमिक की भांति है, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, ये हमें हर लेवल पे फैलाना चाहिए, स्कूल से लेकर जनरल पब्लिक से लेकर हर ग्रुप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑफिस में ये सब चीज़ का अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अगर हम इस अवेयरनेस को फैलाते हैं तो आई एम श्योर हमारे देश का एक जो हमारे ऊपर एक जो तमगा लगा हुआ है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा हेड इंजरी होती है, तो ये तमगा हमसे हट जाएगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये है, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम डॉक्टर अनिल कालरा, गुरुग्राम। वी लर्न बाय मॉक ड्रिल फॉर अर्थक्वेक वी मे फेस और नॉट इन आवर लाइफ टाइम। वी ड्राइव टू व्हीलर डेली, वी मस्ट वियर हेलमेट। तो ये भी एक मैसेज दे रहा है कि हमें जब भी जाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे हम बाइक चलाएं चाहे साइकिल चलाएं। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगा कि जैसे कालरा जी ने कहा, जो भी श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमें किसी स्पेसिफिक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है। जिस भी इंसान को इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, इसको फैला सकते हैं। एक दिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए किसी को कहीं भी चोट लगी हो, तो आसपास जितने भी खड़े लोग हो, चाहे वो बाईस्टैंडर्स हो, पुलिस वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा एक ड्रीम है ताकि हमारे हेड इंजरी के नंबर्स को और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें।
1: तो श्रोताओं, सिर की चोट छोटी हो या बड़ी, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। समय पर पहचान, सही उपचार और थोड़ी सी सावधानी जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। इससे पहले ये लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एम्स न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, और साथ में अपने सारे हमारे चिंदे में श्रोता थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जाते जाते बस इतना कहूंगी, सावधानी ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही जीवन है। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अच्छा, ये भी औखा ही है, अभी देख लो पटवारी भी नहीं बचते कुत्तिया तो।
1: ना जी कोई वो नहीं, वो उन्हें नहीं है थोड़ी देखना, तो पटवारी है ना कोई कोई सुधारण बंदा है, उन्हें थोड़ी देखना जी।
0: वो नहीं कुछ देख दे।
1: ज्यादा बच्चों नू तो बजुर्गों नू बचाना चाहिए जी। बच्चों नू दो तीन पटियाले चांस होए आ, बच्चों का कोई 6-7 साल की लड़की जा रही थी, कुत्तिया ने उन्होंने बहुत जख्मी कर दिता
0: जी
1: उन्हों।
0: जी जी उन्होंने नोच लिया, काफी कुत्ते झुंड बना के
1: साढ़े
0: इकट्ठे हो
1: जो
0: जाते हैं।
1: एक्सीडेंट भी बहुत होंगे ना इन्होंने, एक्सीडेंट दे वो कुत्ते का पता कोई नहीं किधर नू चल जाना, किधर नू चल जाना आ जाना।
0: जी ये भी गल बिल्कुल सही है। हाँ जी, कदों भी अगे आ जाते नहीं पता चलता कई बार। तो तुसी किस
1: चलो
0: तरीके,
1: डॉक्टर ट्रीट आ जिन्हों की जेडी इन्हों की सेवा तो जरूर करनी चाहिए, इन्हें ख्याल रखना चाहिए,
0: जी जी
1: पर बचा भी रखना चाहिए, अपने आप को बचा भी रखना चाहिए।
0: जी बचाव ही रखना बहुत जरूरी है।
1: हम पिंडा भी है इदा मैडम जी, अगे नालिया होंदिया सी, नालिया च बह जाते ही, पानी पुनी पी लेंदे ही, हुण लग गई अंडरलोक टाइलां लग गईयां, नालिया दा अंडरग्राउंड हो गईयां
0: जी
1: सारा कुछ, उन्होंने बेचारे नूं बैठन नूं थां नहीं कितें मिलदी,
0: कोई। हाँ जी
1: ते ओ जिहड़ियां इंटरलॉक टाइलां ओह वी गर्म होणियां हुंदियां आ,
0: जी
1: ते साडे बंदे जदों क चांस हो गया कुत्ते मर गए बेचारे गर्मी दे नाल ही मर गए।
0: गर्मी करके, इसी करके तां कह रहे हैं कि आपां सानूं उन्हां दा ध्यान रखना चाहिए, पानी जिहड़ा उहदा पूरा प्रबंध करके रखना चाहिए घर दे बाहर।
1: हांजी चलो पानी दा नहीं, क्योंकि बंद हरेक ने चलो प्रमाणी
0: जी खान पीन दा
1: पक्षियों
0: सब।
1: वास्ते भी रखे आया, जानवरों वास्ते भी
0: जी
1: रखे, एवं क्योंकि हरेक ने रखे, चलो परमात्मा सेवा कराउंदे आ
0: जी
1: करदे आ सारे, है ना,
0: जी जी
1: ते रखना भी चाहीदा है जी, हरेक ने रखिया वो गर्मियों नू, हरेक कोई ख्याल रखदा जी, क्योंकि
0: पर कु
1: असीं तां बोल के लैणे ने पानी मूनी मंग लैणे, इन्हां ने बेचारे ने बोल के थोड़ा मंगणा जी।
0: हाँ एक गल तो सही है, पर कुत्ते दी खासियत भी हुंदी है, जिदा जगह कोई गर्म बड़ी है ना ठंडी करनी होवे, जिहड़े पानी नाल डोंगा रख्या हुंदा ना उही सुट के ठंडा कर लैंदे आ।
1: हाँ जी हाँ जी, लेकिन उत्थे शाम है ना जी, होवे फेर ही है ना, वो बेचारे धुप्पे भी किथे बैठेंगे, चलो थल्लो ठंडा हो जाए, उत्तों तो उन्हें धुप पैनी है ना,
0: हाँ उत्तों तो धुप पैनी है। चलो जी ये दस
1: भी है नहीं, दरख्त भी बहुत घट आ,
0: जी जी
1: ते अगे खूह ते खूहां ते चल जांदे डोगे, आड़ा चलदियां ने पानी वाली आड़ा च बह जाना, उन्होंने आड़ा उड़ा भी है नहीं गी।
0: जी हुण कुछ नहीं है, इसी करके तां कुछ लोग अपने घर दीवार ही छोटा जिहा शेल्टर बना के इहनां दी राखी करदे ने। ते
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी
0: ते
1: हाँ
0: बड़ी अच्छी गल तुसीं सानूं सुनाई, ते गीत कि अज फिर सुनना चाहोगे?
1: गीत मारो जी, कंच कले का सुना दो, दिल केड़ा मुल विकना जी।
0: जी जरूर जी, की हो गया दिल नूं, मुल नहीं विकना जिहड़ा।
1: दिल माजी मोल तो नहीं बेचना, बेचना है मोल जो बेचे तो परमात्मा ने बेचे है जी,
0: जी जी
1: वो परमात्मा ने मोल बेचे है जी,
0: जी थैंक यू सो मच।
1: परमात्मा दिल तक ये अपना आप ही सारे ओदे हवाले किया जी
0: जी जी जी
1: परमात्मा। हाँ
0: जी थैंक यू
1: जी
0: सो मच जी, सन कॉल करने वास्ते जी,
1: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू
0: थैंक यू जी, थैंक यू। लो जी दिल केड़ा मुल विकना, ये तो अगे तो आप प्ले करांगे, तो इस नाल दे नाल डॉग्स बारे गलबात कर रहे हैं जी, किसे कहानियां सानू साडे लिसनर सुना रहे ने, बहुत सारे केसिस दे बारे भी गलबात हो रही है, तो होर भी बहुत सारी गल्लां आपां करदे रहांगे इस तरीके कॉन्टीन्यू। प्रोग्राम चल रहा है हैलो जलंधर, तो हुण मैं प्ले करन जा रही हाँ जी गीत कंठ कलेर की आवाज़ दे विच, एक प्यारा जिहा ट्रैक।

0: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: ओके मैम, बाय।
0: ओके जी, बाय जी। लो जी, गाने दी फरमाइश भी आ गई, जिस नाल असीं डॉग्स दे ते गलबात भी असीं अज कर रहे सीगे। ते देखो, बड़ा सीरियस मसला भी है, पर कितना कितने फनी भी थोड़ा जहा लगता है। कई बार डॉग जड़े ने आप डरे होंगे ने, वो दूसरे डराने की कोशिश करते हैं। यह भी मैं बड़ी चीज़ नोट की है। तो खाण पीन की गल तो बखरी छोड़ो, इतने तो डॉग काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड के हाई हो गए हैं। तो जो छोटी मोटी चीज़ में हाथ नहीं पाते, बड़ा कुछ वधिया खाना पीना पसंद करते हैं। चलो जी, मैं हरजीत हरमन की आवाज़ के गीत जरा प्ले कर जा रही हाँ, तो उस तो बाद मुड़ के आते हैं जी, गलबात करते हैं अगली कॉलर के नाल।

0: दोस्तों गजब भयो रामा जुलम भयो रामा, मुझे लगता है कि गजब हो गया क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी। यो वाणी मेरे नाल आरजे शिवम ते
1: आरजे नेहा दे नाल ते। दोस्तों सिर्फ गजब होया, जुलम तो नहीं होया। वैसे
0: जुलम हो जाएगा क्योंकि मैंने लगता है कि नेहा नाल मेरी ड्यूटी है तो जुलम हो ही जाता है, क्योंकि नेहा फिर मैंने अखा कट के कह रही है कि फिल्म की गल करो तो मैं फिल्म की गल नहीं कर रहा, तो फिर मेरे नाल तो जुलम होना ही है।
1: हाँ तुम कह रहे हो मैं तो जुलम कर दी हाँ,
0: फिर मैंने कहना तो पेगा ना क्योंकि
1: जी असी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करांगे तो साडे लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन किद्दां जाएगी शिवम।
0: तो बस फिर दस दिंदे आ जी, फिल्म साडी अगली फिल्म है जी
1: कड़वी हवा। हुण असी गल करदे आ इमोशनल ते मीनिंगफुल फिल्म कड़वी हवा बारे, जो कि रिलीज़ होई सीगी 24 नवंबर 2017 दे विच। डायरेक्टर सीगे दे नीला मधाप पांडा
0: जी। दोस्तों फिल्म की गल करिए तो फिल्म राजस्थान ते उड़ीसा के ड्रॉर प्रोन इलाकों की सच्ची कहानियों तो प्रेरित है। एक अंधा इंसान ते बैंक रिकवरी एजेंट ते माध्यम नाल ये फिल्म दिखाती है कि मौसमी तब्दीली किसे तरह आम लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रही है। डायरेक्टर नीला मधाब पांडा ने इस कहा कि वह लोगों एनवायरमेंट प्रति कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। फिल्म का वर्ल्डवाइड ड्रॉस लगभग 29 लाख रुपए सीगा, पर समाजिक संदेश करके इसनू नैशनल अवार्ड स्पेशल मेंशन भी मिलिया।
1: तो दोस्तों इस मूवी दी जड़ी दा मैसेज है वो ये है कि जे असी क्लाइमेट चेंज नू इग्नोर करते हैं तो ये फ्यूचर जनरेशन नू सिर्फ कहानियां विच ही हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि जिहड़ी साडी आन वाली फ्यूचर जनरेशन है उन्हां नू तो नेचर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा।
0: तो बस फिर दोस्तों सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे इस मोटिव दे नाल बनी ये मूवी सानूं ये दिखाती है कि जनरेशन्स नू जो नेचर दे रिसोर्सेज है उसकी कंजरवेशन करनी चाहिए, उसकी संभाल इदा करनी चाहिए कि आने वाली जनरेशन्स भी उन्होंने रिसोर्सेज नू कंजर्व करके यूटिलाइज कर सकन। तो फिर मैं लगता है इन्नी कंजरवेशन तो असी कर ही सकते हैं, क्योंकि अज के पूरे शो के असी ये मैनीफेस्ट करना है कि वो चीज़ा असी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ा इदा दी है ने जिस दे नाल असी नेचर नू संभाल सकते हैं। तो सब तो जो एक मैसेज मैं देना चाहूँगी ना, कोशिश करो जिन्हें हो सकन दोस्तों पेड़ जरूर लगाओ। तुसी कदे नोटिस किया होगा ना, जो असी किसी धुप्प या इन्नी गर्मी दे विच किसी पेड़ दे या किसी रुख दले खड़े हो जाने हैं सानू कितना सुकून महसूस होंदा है। तो बस फिर इन छोटिया छोटिया चीज़ों ध्यान विच रखो, तो बस एक छोटी जी कोशिश तुहाडी साडे नेचर नू वधिया बना सकती है तो बचा सकती है।
0: तो एक कोशिश जी असी गाने की भी की है, उस गाने ते तुसी इंजॉय करो, फिर मुड़दे हां जी लैके आंदे हां कुछ होर फिल्मां ते कुछ होर गल्लां।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते

रिलैक्स कर रही है और सानू लग रहा है कि शायद ये साउंड इसी तरीके ना चलती रहे। लोको देखो इन नदी ना सानू एक गल सिखाती है कि रुकना नहीं है, राह विच पत्थर आन तां रस्ता बदल लो पर चलना कदी ना बंद करो। जिस तरीके दे नाल ये दरिया पानी कदी नहीं रुकता, ये चलता ही रहिंदा है चलता ही रहिंदा है ते अपनी अलग जगह अपनांदा है। इसे नूं लैके एक छोटी जी कहानी भी मैं तुहानू जरूर सुनाऊंगी। एक ना मुंडा बहुत ज़्यादा परेशान सी, वह दरिया के कंढे जा बैठा और दरिया के कंढे बह के ना उसने गुस्से दे नाल कहा, मेरी जिंदगी विच इन्नियां रुकावटां क्यों ने। दरिया चुपचाप वगदा रहा। थोड़ी देर बाद मुंडे ने वेख्या कि दरिया अगे पत्थर आन ते रुकदा नहीं है। उन्हें देखा कि इन्ने सारे पत्थर इस दरिया के अगे पे ने बट ये रुकन का नाम नहीं ले रहे, चली जा रहा। तो दरिया अपना रस्ता बदल लैंदा है। उसनू बस उदों ही समझ आ गई कि जिंदगी विच हर मुश्किल नाल लड़ना जरूरी नहीं है, कई वारी रस्ता बदलना ही सियाणप हुंदी है। इसी नाल इस नेचर विच असीं हुण दरिया तों सिख्या कि जिंदगी विच हुण असीं अगे वधदे जाणा है, कदी नहीं रुकना। ये पत्थर साडी जिंदगी विच रुकावटां हुंदियां ने जो किसी ना किसी रूप विच आ जांदियां ने। कई वार असीं घबरा जांदे आ ते अपना रस्ता बदल दिंदे आ, असीं छड्ड दिंदे आ उस चीज़ नूं कि असीं अपनी मंजिल वल नहीं जा पावांगे। बट कुछ सीखो इन्हां दरियावां तों पानी तों। एक होर चीज़ सानूं सिखाउंदे ने कि मिल के चलो, रल मिल के चलांगे तो जरूर मंजिल वल पहुँचांगे। इस करके अपने इस नेचर नूं कदी नज़रअंदाज ना करो। ये सैर इसी तरीके नाल चलती रहेगी, तुसी कितने नहीं जाना। नाल दी नाल असी गीत भी तो प्ले करने हैं ना, एक गीत का मज़ा लो। उस तो बाद मुड़ के आँदी इहदी तुहाडी दोस्त आर जे सुरभि इस सैर नूं अगे वधाउण वास्ते। देखांगे सैर विच अगे होर की कुछ सानूं मिलदा है जो सानूं कुछ ना कुछ सिखाएगा।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। इस प्रोग्राम में असं अज नेचर नाल जुड़े हाँ। उम्मीद करती हाँ तुसी इस नेचर नू समझिया होएगा अज ते मेरे नाल इस सफ़र का आनंद भी मानिया होएगा। सो दोस्तों हुण गहरी साह लो क्योंकि असं हुण बाहर आ चुके हैं उस कुदरत दी दुनिया तो। दूर देखो सूरज हल्की हल्की रोशनी फैला रहा है जिवें हर किसी नू नवी उम्मीद दे रहा होवे। कुदरत दी सब तो सोहनी गल पता की है, बिना कुछ कहे अंदर दे थकान नू दूर कर देंदी है। सो सफ़र बहुत वधिया रहा तुहाडे सारे नाल। दोस्तों जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है पर कई बार खुद नू टाइम देन दे लई नेचर दी गोद विच बैठना बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि कुदरत सिर्फ नज़ारे नहीं दिंदी, ए टुट्टिया होया दिल भी संभाल लैंदी है। मैं हाँ तुहाडी दोस्त आरजे सुरभी ते तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम लव यू जिंदगी। एक प्यारी जिही नेचर दी सैर असीं कीती है ते 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल चलदा पिया है ते अगले आरजे पहुँच चुके ने। उन्हां दे नाल हुण तुसीं अगले प्रोग्रामां दा आनंद माणियो। उम्मीद करदी हां कि तुसीं इह प्रोग्रामां नूं इंजॉय कीता होएगा ते हुण अपनी दोस्त आरजे सभ इजाजत हो जी। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। रब रखा, हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो।

संगीत है, जिन्नी भी धुन है, ये सारी ही कहिंदे आ कि श्यामा स्टूडियो दे विच बैठी सी जद सरदूल ने ये धुना तैयार की। सरदूल दे बनाए गए म्यूजिक दे विच पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू तां सी ही सी, इस दे नाल ही नाल लोक गीतां दी खुशबू भी

0: बच्चा।
1: बले बले बले बले।
2: हाँ, बल्ले बल्ले तो करवाई ही सदूल सिंह कवात्रा दे संगीत ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत ते मुताबिक बुलाया जावेगा।

हांजी 1.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर एफएम रेनबो दिल से दिल तक ट्यून इन कीता होया तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। दोस्तों प्रोग्राम दी शुरुआत विच मैं तुहानू कहा सी कि फिल्म दी खास हस्ती बारे ते गलबात करांगे, पर उसदे नाल ही नाल तुहानू प्रोग्राम दे आखिर विच दसांगी इस महीने रिलीज होईयां फिल्मां दे बारे। चलो जी फिर शुरू करते हाँ। इस महीने मई का महीना चल रहा है दोस्तों, तो बहुत जल्द जड़ा है स्कूल कॉलेजेस दे विच भी छुट्टियां होने वाली हैं, तो किते एग्जाम्स दे चक्कर विच तुसी कोई फिल्म लेटेस्ट मिस तो नहीं कर दिती? जो मिस कर दिती तो मैं क्या जी तुहानू दसन जा रही हूँ इस महीने रिलीज हुई फिल्मों के बारे। सब तो पहला गल करिए पंजाबी फिल्मों की, तो इस महीने की पहली तारीख को रिलीज़ हुई फिल्म पिट स्यापा। स्टारकास्ट की गल करिए सोनम बाजवा ते परमवीर सिंह चीमा। एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है जिस विच परिवार के जड़े है मिस एडवेंचर्स दिखाए गए है, तो किस तरह उन्होंने आपस के तालमेल जड़ा है वो संतुलन उसका जड़ा है बिगड़िया हुआ है, ते परिवार का जड़ा ये बिगड़िया हुआ संतुलन दर्शकों खूब हसांदा है। फिल्म के डायलॉग्स जड़े है अच्छे है, हसांदे है, तो इस दे नाल ही नाल ये भी सुनेहा देंदे है कि अंडरस्टैंडिंग होना परिवार के मैंबरां विच बहुत जरूरी है। इस तो बाद इस महीने रिलीज़ हुई नीरू बाजवा स्टारिंग फिल्म जवाक। फैमिली ड्रामा है जो कि एक भावुक करने वाली फिल्म है। दोस्तों जो इंसान पेरेंट्स बनता ना, जो मापे बनते हैं असं, तद बहुत चीज़ों के बहुत जिंदगी दे बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारिया चीज़ा जड़िया बचपन ते पेरेंटिंग किवें दोनों के की कॉम्पलैक्सिटीज़ आदि वा, किवें दोनों जड़े है एक दूसरे नू समझने की कोशिश करते हैं अज के समाज के विच इस दे उत्ते।

आधारित है फिल्म जवाक। परमेश वर्मा स्टारिंग ते सोनल चौहान दा ने साथ दिता फिल्म शेरा दे विच। एक एक्शन मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो तुहानू हसांदी भी है, थोड़ा बहुत इमोशनल भी करेगी ते नाल ही नाल एक्शन भी भरपूर देखने मिलेगा। मैं क्या परमेश वर्मा साहब ने ते फिर एक्शन ते हो ही गया ही होएगा। दोस्तों ये तो रही गल पंजाबी सिनेमा दे विच फिल्मां किहड़ियां रिलीज़ होईयां उहनां बारे। ब्रेक तो बाद जानांगे हिंदी सिनेमा दे विच किहड़ियां फिल्मां जिहड़ियां है रिलीज़ हो गईयां या फिर होण वालियां इस महीने।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हो रहा है या फिर की कारण है तुहाडे अनुसार? जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों अपनी गल जड़ी है उन्होंने बड़े ही सहज ढंग नाल रखी कि सबर संतोख जड़ी है ये बंदे विच होनी बहुत जरूरी है। इसते ही असी गल कर रहे सी कि बंदे दे विच इन्हां चीज़ां दा होना किन्ना जरूरी है। तो साढ़े दोस्तों का भी यही मनना है तो बाकी दे दोस्तों का की कहना है की मनना है जानांगे, पर पहला सुनते हाँ एक प्यारा जिहा गीत तुहाडे सारे पासे पेश करन जा रही हाँ सतिंदर सरताज की आवाज़ के।

0: हेलो हेलो
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं
0: जी, नमस्कार जी, कौन कॉल कर रहे हो
1: मैडम जी।
0: जी? कौन कॉल कर रहे हो जनाब? फोन
1: हाँ
0: थोड़ा लग गया है प्रोग्राम पब्लिक मंच दे विच।
1: जी, लुधियाने तो बोल रहे हैं जी, लुधियाने तो।
0: जी नाम की है जी?
1: राजवंत सिंह जी, ठीक
0: जी राजवंत सिंह जी, की हाल है
1: है जी।
0: जी? राजवंत जी, प्रोग्राम दे विच अज असी गलबात कर रहे हैं, विशा अज असी चुनिया है अपराध, क्योंकि लगातार वध रहे ने, ते
1: हाँ
0: प्रोग्राम
1: जी, हाँ
0: विच
1: जी,
0: थोड़ा ही समा बाकी है, तुहाडे तो जानना चाहवांगे कि लोकां नूं कानूनी जानकारी जे दित्ती जाए ते
1: हाँ जी,
0: अपराधां दे विच घाटा दे विच अपराधां दे विच कमी देखण नूं मिलेगी
1: हाँ जी, हाँ जी। मैडम जी, इस टाइम सब
0: जी?
1: तो पहला तो ना माँ प्यो नूं बच्चे ने कंट्रोल करना चाहिए, भी हर वक्त बच्चे ने ध्यान रखे।
0: जी
1: दूसरे, स्कूलों के विच कॉलेजों विच ऐसी एजुकेशन होवे जो कि बच्चे नूं मतलब चंगे पासे ले जा सके, ठीक है जी।
0: जी
1: तीसरे, जिवें हुण बच्चे पढ़ जांदे ने, कोई एमए बीएड कर जांदा, डबल एमए बीएड कर जांदा, कई बच्चों ने डबल एमए बीएड कीती है और उन्हां नूं सर्विस नहीं मिलदी जी। सरकारां नूं चाहीदा है कि पढ़े लिखे दे हिसाब दे नाल उन्हां नूं नौकरी दित्ती जावे, तां कि जिहड़े बच्चों का ध्यान जिहड़ा ना किसी
0: जी
1: होर पासे ना जावे, ठीक है जी।
0: जी
1: ते अपने आप ही अपराध घट जाणगे जी, जदों बच्चों नूं चंगीआं नौकरियां मिल जाणगीआं, ते
0: जी
1: मतलब ही नहीं जी फिर कोई अपराध वल जाण। हाँ जी,
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी राजवंत जी,
1: हाँ जी,
0: प्रोग्राम विच जुड़न वास्ते ते अपने कीमती विचार साझा करन वास्ते
1: हाँ जी, ठीक
0: जी।
1: है, थैंक यू मैडम जी।
0: दोस्तों, प्रोग्राम पब्लिक मंच, इस प्रोग्राम के तहत मकसद यही होंगे तुहाडे विचार जानने का कि तुसी की सोच रखते हो समाज के विच होण वालियां चीज़ों के बारे। तो अज इस प्रोग्राम के विच कुछ दोस्तों ने फोन मिलाया जिन्हां नाल गलबात नहीं हो पाई, तो कुछ दोस्त जिन्हां का फोन मिलिया तो गलबात भी हो पाई, तो उन्होंने अपने विचार भी बाखूबी रखे। बहुत सारिया चीज़ा अज के प्रोग्राम के विचों निकल के आदियां हैं, सबर संतोख की तो असी गल कर ली, गल सिक्ख्या की भी आती है, गल परिवार की भी आती है। दोस्तों ने जिमें अलग अलग जगह तो दोस्त जुड़े, आखिरी दोस्त की ही गल करिए जिन्होंने फोन मिलाया, उन्होंने कहा सिक्ख्या बहुत जरूरी है, चंकी सिक्ख्या होगी सानू चंगे माड़े दे विच अंतर पता होगा, चंगे नागरिक बनांगे, एक चंकी नौकरी हासिल करांगे।

नमस्कार, FM 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रात दे 9 बजे ने ते पेश है FM न्यूज हेडलाइंस। भारत ते साइप्रस ने अज दहशतगर्दी दे मुकाबले लई इक सांझा कारज समूह स्थापित करन अते उच्च सिक्ख्या अते खोज समेत कई समझौतियां उते दस्तखत कीते ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश दियां सरहदां नूं होर सुरक्षित बनाने लई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले विच वीडियो कॉन्फ्रेंस राही वख-वख सरकारी विभागां अते संगठनां विच 51,000 तो वध नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। चोण कमीशन ने अज 10 राज्यां विच 24 राज सभा सीटां लई चोणां दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। पंजाब पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल करदियां देश भर दे स्कूलां अते होर संवेदनशील स्थानां उत्ते बंब दे झूठे ईमेल भेजण विच शामिल नैटवर्क दा पर्दाफाश कीता। CBSE ने 12वीं जमात दियां बोर्ड परीक्षा दियां उत्तर पुस्तिकावां दियां स्कैन कीतियां कापियां हासिल करन दी आखरी तरीक एक दिन वधा के 24 मई कर दित्ती है। अत दी गर्मी दे मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अहम फैसला लैंदियां पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कॉलेजां दा समां बदलण दा ऐलान। ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਲੋਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਪੜਾਅ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। वेलकम बैक है जी प्रोग्राम।

दिल चाहता है सुन रहे हो तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। मैसेजेस दा सिलसिला अगे वधांदे होए चलदे आं अपने दोस्तां वल, उन्हां दे मैसेजेस वल जो कि सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तों आया जी मैसेज। टी डी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जैविर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका तो मैसेज किया जी इन्होंने। तो गीत दे इन्होंने बोल लिखे है, मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं बना, पर इन्होंने फिल्म का नाम नहीं रखिया दसिया कि केड़ी फिल्म का गीत है जी। मैं कह जी तो बड़ी मुश्किल हो गई। जो भी मैसेज भेजो फिल्मी फरमाइशा का गीत का प्रोग्राम है तो जरूरी है जे तुसी फरमाइश भेज रहे हो प्रोग्राम दे विच ते गीत दे नाल नाल उस गीत दी फिल्म का भी जिक्र करो। तो जेकर उस गीत दे नाल कोई खास दिल दे करीब किस्सा जुड़िया होया है तो वह भी मेरे नाल सांझा करना बिल्कुल नहीं भुलना। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना रजिंदर सिंह ओबराए का मैसेज आया जी। तो लिखते ने आराधना फिल्म का जड़ा है गीत सुना दिता जाए। एक होर मैसेज गाउन थाना पंजाब तो आया है जी, साढ़े तक पहुँचया है। तो मैसेज भेजन वाले ने हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता ते गीता। मैसेज है इन्हों का, खुश रहो खुशियां वाटो। तो इन्होंने कोई भी फरमाइश नहीं भेजी। तो दोस्तों मैनू ना अज इदा ही बहुत सारे लोगों ने मुलाकात होंगी तो बहुत सारे लोगों के कुछ लोग तुहानू चेते रह जाते हैं। तो दोपहर का वेला सी, बैठी चाह पी रही सी ते अचानक ख्याल आया कि असी किन्नियां सारिया लोगों तो उम्मीदा कर लेंगे ना, किन्नियां सारिया। तो जब वो सामने वाला इंसान साढ़े मुताबक काम नहीं करता तो बस वो बंदा फिर साड़ी हेट लिस्ट में शामिल हो जाता, मतलब वो फिर सानू बंदा चंगे तो माड़ा लगना शुरू हो जाता है। मतलब जो उस बंदे तो असी सोच रहे थे, जो उम्मीदा लगा के बैठे से, उम्मीदा पूरिया ना होंदिया देख के बस वो बंदा साड़ी नज़र में बुरा बन जाता है। ये तो कोई गल नहीं हुई, पर गल सोचने वाली जरूर है कि जिहड़ियां उम्मीदां है ना एक घट तो घट रखनिया चाहिए दूजियां तो। उम्मीद होनी चाहिए है सानू सिर्फ खुद तो, क्योंकि साडा जेकर किसी ते कंट्रोल है, कोई काबू हो सकता है, उसी खुद हाँ साड़ी जिंदगी साडे काबू है, बाकी किसी की जिंदगी साडे काबू नहीं। सानू नहीं पता उन्हां दी जिंदगी विच की कुछ चल रहा है। एक अंग्रेजी कहावत भी है कि डोंट टॉक इफ यू डोंट नो अबाउट मी। चलो जी फिर इन्हां दे भी मैसेज दे के मेरे दिमाग दे विच ओह किस्सा मुड़ आ गया, क्योंकि इन्होंने भी कोई उम्मीद नहीं रखी कि अज ये एक गीत सुनाया जाएगा। इन्होंने कहा किसी भी गीत दे विच शामिल कर लिया जाए तो बस यही है घट तो घट उम्मीदा दा होना। पर दोस्तों तो मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुहानू मना कर रही हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम है, अपनी फरमाइशां जरूर भेजनी है तो कोशिश रहेगी ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशा पूरिया करन दी। तद तक असं सुनते हाँ किशोर कुमार दे सपनों की रानी। अपनी सपनों की रानी बारे की कुछ कह रहे हैं, आओ जी फिर सुनते हैं उन्होंने ही जुबानी।

0: ओ रीमा, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहन ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया। तुसी भी लवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

हाँ जी, मैं क्या जी, मोहम्मद रफी साहब दी आवाज विच गीत सुने आओ फिरकी वाली। वैसे फिरकी वाली या फिरकी वाला उसनों कह जाता है जो लारे इंसान बहुत लाता है। तुसी तो नहीं लारे लाए किसी नू, किसी खास दोस्त नू या किसी खास शख्स नू जिस नाल मिलन दा प्लान तो बनाया पर वक्त दी मजबूरी या फिर कोई होर मजबूरी जिस करके मुलाकात पूरी नहीं हो पाई, तो प्लान जल्दी मुकम्मल कर लेना क्योंकि इदा हो फिर वह भी तुहानू तो इसी तरह कहने लग पैन फिरकी वाले या फिरकी वाली। प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे अपनी दोस्त आज नेहा रलन दे नाल। ते गाओ खोंखरा वाली तो मैसेज आया है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच विनोद बारा साहब, विशाल, विकास, रोशनी, शगुंदा। इस नाल ही दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र ते नोखे लाल मैसेज कर रहे हैं। ते नया दौर फिल्म दी गीत दी फरमाइश लेके हाजिर हुए ने हनुमानगढ़ राजस्थान तो रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। ते एक होर मैसेज आया है जी, मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा पर लिखते ने मैम जी पब्लिक मंच प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया पर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए। ते नाले भी लिखते ने कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट सी क्राइम। मैं कह जी क्राइम की दुनिया है ही इधर भी जिहड़ी चीज़ डिफिकल्ट हो ना खासकर अपराध वर्गी उस तो बहुत बहुत दूरी बना के रहनी चाहिए है तो ही खुद नू ते अपने आस पास के लोगों की हिफाजत कर सकते। दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच एक होर मैसेज शामिल करना चाहूँगी जो कि असाम तो आया है हितेंद्र दास दा। ते लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तों की रली मिली पसंद ते सुनदे हां मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ दे विच ए प्यारा जिहा गीत।

मैं नज़र से एक अंदाज़े नज़र होता हुआ, कौन है दिन रात मुझ में बेखबर होता हुआ। खुलता जाता है समुंदर बाद बादर बाद बा, मैं सफ़र करता हुआ मुझसे सफ़र होता हुआ। दोस्तों मिलन तो पहला बहुत उम्मीदा से उस तो कि वो शख्स कुछ खास चीज़ां लेके आएगा, पर जब वो शख्स आया जो सोचिया से उस तरह हर एक चीज़ तो नहीं सी, पर सब उम्मीदा दे शिकवे शिकायत जर्रा जर्रा बह गए जद उस दी नज़र ते नज़र गई। फिर किसी होर नज़र दे काबिल ना रही ए नज़र, शिकवे शिकायत सब जर्रा जर्रा हो गए, उम्मीदा नवे सिरे तो फिर दोबारा पैदा हुई।

चाहे जो भी हो, इस पल में रहोगे तो जिंदा रहोगे। जुबैर के सर लिखते हैं, नजर नजर से मिलाओगे, मारे जाओगे, ज्यादा बोझ उठाओगे, मारे जाओगे। कोई नहीं है यहाँ इतबार के काबिल, किसी को राज बताओगे, मारे जाओगे। दिल दे राज कहते दिल तक रखने चाहिए, पर जेकर कदे फरोलने पै जान तो इस गल दा यकीन जरूर होवे कि सामने वाला तुहाडे राज हिफाजत नाल रखेगा, सजो के रखेगा। प्रोग्राम शामी गजल दी आखिरी गजल तुहाडी पेशे खिदमत करन जा रहे हैं, जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच।

वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम की था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जर्रा जर्रा, तुम्हें याद हो कि ना हो।

फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था, सामने बैठा था वो मेरे, बैठा था या नहीं। वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकती थी, छू सकती ना थी।

गली गली मेरी याद बिछी है, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है, तो मेरी हदों से दूर निकल।

बस कोई ऐसी कमी सारे सफर में रह गई, बस कोई ऐसी कमी सारे सफर में रह गई, जैसे कोई चीज़ चलते वक्त घर में रह गई। कौन ये चलता है मेरे साथ बेजिस्मो सदा, चाप ये किसकी मेरी हर रह गुजार में रह गई।